सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58:42 हो रहे हैं। आरंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आप सबका दिन मंगलमय हो।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है कथा सरित सागर।

कथा सरित सागर में एक कथा है जिसका मूल मंत्र है कि पैसों के विषय में संयम रखने वाला ही पैसा कमाता है। कहानी बहुत रोचक है, आप भी सुन लीजिए। प्राचीन पाटलिपुत्र में एक वणिक परिवार था। गृहस्वामी की मौत हो चुकी थी। विधवा अपने एकमात्र पुत्र को बहुत दुख के और कष्ट सहकर पाल रही थी। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने कहा, बेटा बनिए के बालक हो, व्यापार करो। इस नगर में विशाखिल नाम का एक धनी व्यापारी बनिया है। कुलीन घर के दरिद्र लोगों को वह व्यापार का सामान देता है, अतः तुम उसी के पास जाओ और मांगो। माता के आदेश पर लड़का बनिए के पास गया। उस समय वह किसी मांगने वाले को गुस्से से कह रहा था, यहाँ भूमि पर एक अधमरा चूहा पड़ा है, यदि तुम में योग्यता है तो इस सौदे से भी धन कमाया जा सकता है। वह आदमी तो क्रुद्ध होकर चला गया, लेकिन बनिए के लड़के ने उस अधमरे चूहे को एक डिब्बे में रख लिया और बनिए को नमस्कार कर बाहर निकल आया। सेठ विशाखिल उस पर हंसने लगा। फिर उस लड़के ने दो अंजुली चने के बदले उस चूहे को बिल्ली पालने वाले एक पड़ोसी को दे दिया। लड़का उस चने को भाड़ में भुनाकर और एक घड़ा पानी लेकर शहर के बाहर एक चौराहे पर पेड़ की छाया में जा बैठा। वहाँ लकड़हारे लकड़ी के बोझ लेकर आए। लड़के से उन्होंने कुछ चना

लेकर खाया और पानी पिया। बदले में उसे दो दो लकड़ियां दे गए। आगे की कहानी लड़के को लकड़ी का बोझ बेचकर धनी हो जाने की है। बरसात से पहले वह लकड़ियां एकत्र करता रहा और फिर उन्हें बरसात होने पर महंगे दामों में बेचता रहा। उस धन से दूसरे धंधे किए और 4-5 वर्षों में ही वह धनी बन गया। इस तरह एक अधमरे चूहे के बल पर अपनी कार्यकुशलता से वह पाटलिपुत्र का एक नामी सेठ बन गया। मूल कथा से यह सीख मिलती है कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो तो उसे ही अपने जीवन का वास्तविक ध्येय और कर्तव्य मानकर अथक परिश्रम करते रहें। सफल व्यापारी होने के लिए उसकी साधना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने चरित्र को ही अपनी पूंजी मानकर किसी कार्य में लगाता है, जो अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से पूरा करने का निश्चय कर कदम उठाता है, उसे जीवन में असफलता का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता। ईमानदारी जैसी मूल्यवान और महान वस्तु और कोई नहीं। जो लोग ईमानदारी को खो बैठते हैं उनके चारित्रिक गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भौतिक दृष्टि से वह भले ही कितने संपन्न दिखाई देते हों, लेकिन उनकी यह संपन्नता सुख का आधार नहीं बनती। अधिक धन प्राप्त कर लेने से ही कोई आदमी सुखी नहीं हो जाता। सुख तो अंतर में सहज रूप से उत्पन्न होने वाला तत्व है। वह ईमानदारी के मार्ग से कमाए गए धन में सहज होकर आता है। आदमी दूसरे को तो धोखा दे सकता है, अपने आप को कैसे ठग सकता है। अतः आत्म प्रवंचना से बचिए, जीवन में सहज और स्वच्छ मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए।

आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था कथा सरित सागर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी भक्ति गीत।

और अब इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं,

श्रोताओं, सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुबह 7:20 का वक्त होगा कार्यक्रम विविधा का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता जीवन में संगीत का प्रभाव। सुबह 7:30 पर आप लुत्फ उठाएंगे गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत संगीत का। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:30 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। सुबह 8:45 का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी का। सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से आप फिर से सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 1:20 पर आप फिर से विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा दोपहर 2:55 पर। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती।

के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम 4 बजे आप सुनेंगे। प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम 4:02 से आप फिर से लुत्फ उठाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम 4:30 पर आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी को शाम 5 बजे आप सुनेंगे। प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम 5:02 पर आप लुत्फ उठाएंगे। हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी का शाम 5:30 पर आप सुनेंगे। ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी शाम 6 बजे आप सुनेंगे। प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम 6:02 पर आप सुनेंगे। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: देवों में महादेव की
1: जय हो।
0: देवों में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
1: जय हो जय हो जय हो।
0: सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, महिमा सुन

0: आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम सुनाएंगे कार्यक्रम का शेष गीत आपको इस जरूरी संदेश के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: जरूरी संदेश के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम लोक रंग में स्वागत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्म लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय है जीवन में संगीत का प्रभाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार दुबे।
1: जीवन में संगीत का प्रभाव। सृष्टि के स्वर्णिम बिहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का महत्व मानना ही पड़ता है। जीवन रूपी ग्रंथों को हम कहीं से पलटते हैं तो कोई अध्याय ऐसा नहीं जिसे संगीत से शून्य कह दिया जाए। मनुष्य जन्म लेते ही गीत सुनता है। आज मोहे अंगनवा जन्म ले ले होरिलवा। बच्चों के जन्म लेते ही माताएं सोहर गीत गाना शुरू कर देती हैं। मृत्यु होने पर भी गीत सुनते सुनते श्मशान तक की यात्रा करता है। उसे घंटे घड़ियाल और राम नाम सत्य है के ध्वनियों के साथ उसके स्थूल शरीर को शून्य में विलीन कर दिया जाता है। इस मानव का शरीर 5 तत्वों के मिलने से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है और यही तत्व जीवन के आधार माने जाते हैं। इनमें से किसी एक की कमी होने पर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। समस्त जड़ चेतन का मूल आधार इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इन 5 तत्वों में संगीत मौजूद है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति संगीतमय वातावरण एवं संगीतमय तत्वों से परिपूर्ण है। संगीत आत्मा का मूल आधार है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होता है। जिस प्रकार आत्मा का संबंध परमात्मा से माना जाता है, उसी प्रकार स्वर का संबंध आत्मा से है। इससे संगीत और आत्मा का संबंध प्रमाणित होता है। इस सृष्टि का कोई भी प्राणी हो संगीत से अछूता नहीं हो सकता। कहावत है कि गाना और रोना सभी को आता है। जो व्यक्ति अपने विवेक अभ्यास से स्वर ताल पर अपना अधिकार कर लेता है, उन्हें समाज में आदर भाव से देखा जाता है। उन्हें गवैया की पदवी दी जाती है। परंतु जो संगीत साधना में नहीं रहते वो भी गायक से कम नहीं है। गांवों में गाने वाले लोक गीतों के विभिन्न प्रकार प्रचलित होते हैं, जैसे कपड़े धोते समय धोबियों का गीत, खेतों में पानी की सिंचाई करते समय किसानों का गीत, पशु चराते समय चरवाहों का संगीत जिसे बिरहा भी कहते हैं, उस साधक से कम नहीं है। संगीत मानव जीवन के दिनचर्या में समाहित है। जैसे विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक समारोह अन्य जगहों पर। इस संसार में संगीत का जादू जैसा असर है। पावस की लाजवंती संध्याओं की श्वेत श्याम

मेघमालाओं से प्रस्फुटित नन्ही नन्ही बूंदों का रिमझिम रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं, कृषक लहलहाते फसलों को देखकर अचानक अलाप ले उठता है, काल रूप विषधर भी बीन की स्वर लहरियों में खोकर सपेरा की पिटारी में बंदी बन जाता है। मनुष्य जीवन पथ के सभी मोड़ पर अनेक प्रकार के संगीत प्राप्त करता है। युद्ध के मोर्चे पर उत्साह वृद्धि के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के सैनिक विभिन्न प्रकार के संगीत का ही प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, चारित्रिक उत्थान एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का उत्तम साधन संगीत है। संगीत की गहराई मापी नहीं जा सकती। मनुष्य ज्यों ज्यों इसकी गहराई में उतरता, उसे और अधिक व्यापक बड़ा दिखाई पड़ता है। इसमें रुकने का एक ही माध्यम है, साधना का पथ, अर्थात रियाज करना, प्रैक्टिस करना। प्रसन्नता की बात यह है कि आजकल विश्व के कुछ विशेषज्ञ एवं डॉक्टर संगीत के रहस्यपूर्ण तत्वों के खोज में लगे हैं, जिससे लोगों में इसके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक रोगों पर पक्षघात अथवा कालिज के रोगियों पर संगीत की स्वर लहरियों का अचूक प्रभाव दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के बूमब्रिज एक प्रकार के जंगली घोड़े संगीत की सहायता से भारी संख्या में पालतू बन गए। लंदन के एक अस्पताल में गूंगे, बहरे और पागलों पर किए जाने वाले संगीत के प्रयोगों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में डेनमार्क में गायों को दूहने के पहले उन्हें संगीत सुनाई जाती है, जिससे वो अधिक दूध देते हैं। संगीत के इस प्रभाव से वर्तमान समय में अच्छे अच्छे चिकित्सालयों, अस्पतालों में भी म्यूजिक थेरेपी, संगीत थेरेपी आरंभ हो गया है एवं असाध्य रोगों के लिए रागों का भी चयन किया गया है। जैसे कब्जियत के लिए राग गुणकली अधिक सार्थक है, राग गुणकली का अभ्यास करना। मधुमेह रोगियों के लिए, डायबिटीज रोगियों के लिए राग अहिर भैरव अधिक सार्थक है, जो प्रातःकालीन राग है। हृदय रोग के लिए राग चंद्रकोश काफी सार्थक सिद्ध हुआ है। डिप्रेशन के लिए राग ललित एवं राग पीलू काफी सार्थक है। पैरालिसिस के लिए रागनी भैरवी, यह भी प्रातःकालीन राग है, काफी सार्थक है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए राग भूपाली, जो संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रारंभिक राग माना जाता है, यह काफी सार्थक है। भारत के नामी गिरामी अस्पताल भी संगीत चिकित्सा प्रणाली को अपनाने लगे हैं। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में प्रहलाद के नाम से म्यूजिक थेरेपिंग खोला गया है। नई दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के कमरों में भी राग आधारित सॉफ्ट म्यूजिक बजाए जाते हैं। एम्स के चिकित्सकों ने भी

0: इस थेरेपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे रोगियों को आराम मिलता है। अतः संगीत मानव जीवन के धड़कन का स्पंदन है। संगीत मानव जीवन के धड़कन का स्पंदन है, सृष्टि के बिहान का नौ किरण है, नौ किरण है, नौ किरण है। जय संगीत, जय संगीत, जय संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज आपने सुना जीवन में संगीत का प्रभाव। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रहे थे वार्ताकार डॉक्टर विजय कुमार दुबे।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

0: अभिजीत और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ जरूरी संदेश, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम के शेष गीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गीत संगीत में स्वागत है। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

0: सोनू निगम को आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में।
1: रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर, देखता हूं जिधर तू ही आए नजर, अपना बना ले मुझे, दिल में बसा ले मुझे, तू है मेरी रूहे सफर, रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर।

पंकज उदास की आवाज में गाए इसी गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो हमारे इन प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: धीरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों

0: के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। आकाशवाणी समाचार भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत।

0: हो गई। 8 लोग लापता हैं, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है

0: पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है, शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Monsoon session of parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1798 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत की गई कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करने की अपील की। कहा 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव पाठशाला का आयोजन। संताली फिल्म आंगिन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को दी बधाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का जताया अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की है संभावना। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पिछले 3 सप्ताह में लगभग 1,08,00,000 रुपये मूल्य का 1,798 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया है। सीआईएसएफ ने बताया कि ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत आधुनिक तकनीक, खुफिया सूचना और बढ़ी हुई वैधानिक शक्तियों के उपयोग से की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करें ताकि डिजिटाइजेशन और एएसटीडी सूची का कार्य समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 97.8% मतदाताओं तक घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं तथा प्राप्त फॉर्मों में से 67% का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलओ 2 की तीसरी बैठक एवं चुनाव पाठशाला आयोजित होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष कैंप लगाए जाएंगे। रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी मतदाताओं की सुविधा के लिए आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता से।
1: राज्य जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर उन्हें भरकर जमा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी शहरी मतदाताओं से शिविर

0: का लाभ उठाकर समय पर फॉर्म जमा करने की अपील की है। जिले में अब तक 91% से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण तथा 54% से अधिक फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। तमार, सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने 100% फॉर्म वितरण, संग्रहण और समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: झारखंड में हो रहे जनगणना कार्य को देखते हुए सरकार ने इस कार्य से जुड़े अधिकारियों का तबादला 31 मार्च 2027 तक नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के अनुसार ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संताली फिल्म आंगेन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे झारखंड और संताली समुदाय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि आंगेन ने संताली भाषा, संस्कृति और झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर की गई नई पहचान दिलाई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में झारखंड को 17 बड़े राज्यों में 16वां और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 25वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों और बेहतर वित्तीय स्थिति को राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया है, जबकि कारोबारी माहौल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कमी को बड़ी चुनौती माना गया है। नीति आयोग ने कहा है कि झारखंड को निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों को शीघ्र मंजूरी, पारदर्शी नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है। चतरा के इटखोरी प्रखंड बाजार में 12 जुलाई को ज्वेलरी व्यवसायी दिलीप सोनी की बाइक की डिक्की से करीब 60 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी मामले में पुलिस ने उड़ीसा के जाखापुर थाना क्षेत्र के दशमनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेतानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह के सदस्य को हैदराबाद में अपराध करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था।
3: आरोपी है, उनके पास से 2 हाई स्पीड मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है और पूरे गांव में काफी युवा इस काम में शामिल करते थे। ठेकी करने वाला ग्रुप अलग रहता था और साथ ही झपट्टा मार करके डिग्गी तोड़ने का भी ग्रुप अलग रहता था, जिनको समय समय पर हैदराबाद में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे लॉक खोले जाते।
1: सरायकेला जिले आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गमहनिया स्थित बोलाईडी बस्ती में हुए जगन्नाथ गोप उर्फ काड़ा हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्यगायारी ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
4: सेटी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एविडेंसेस और विटनेसेस सहित हम लोगों ने चार अभियुक्त शिव प्रमाणित संजय नायक, प्रेम नायक और गणेश नायक को गिरफ्तार किया। उन लोगों के खिलाफ में हम लोगों को एविडेंस मिला है, सीसीटीवी फुटेज और उनके निशानदेही पे हम लोगों ने जो हमें प्रयोग किए हुए दो रड उसको हम लोग बरामद किया है।
1: मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विभिन्न वर्गों के विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा विश्व कप फुटबॉल फाइनल मुकाबले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शीर्षक है, स्पेन विश्व चैंपियन, स्पेन की दीवार को नहीं भेद सकी मेसी की अर्जेंटीना। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य में हर बीमारी की अब बनेगी प्रोफाइल। दैनिक जागरण ने आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को पहले पन्ने पर जगह दी है। शीर्षक है, मॉनसून सत्र में हावी रहेंगे चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक और एथेनॉल के मुद्दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1798 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत की गई कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करने की अपील की। कहा, 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव पाठशाला का आयोजन। संताली फिल्म आंगिन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को दी बधाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का जताया अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की है संभावना। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने लिया भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आज का यह कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं मखमली आवाज की मालकिन पार्श्व गायिका गीता दत्त पर। श्रोताओं, हम आपको बता दें, पार्श्व गायिका गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर सन 1930 को एदिलपुर नामक गांव में एक अमीर जमींदार परिवार में हुआ था, जो अब बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में आता है, लेकिन उस समय बंगाल प्रांत ब्रिटिश भारत के फरीदपुर जिले में था। पर उनका परिवार अपनी भूमि और संपत्तियों को छोड़ते हुए वर्ष 1940 के शुरुआती वर्षों में कलकत्ता और असम चला आया। फिर 1942 में उनका परिवार बॉम्बे आ गया, जहां के हनुमान प्रसाद ने गीता दत्त की प्रतिभा को भांप लिया और संगीत सिखाने लगे। यही नहीं उन्हें तैयार करके फिल्मों में गाने का मौका भी दिया। फिल्म थी 1946 में आई पौराणिक फिल्म भक्त प्रहलाद, जिसके संगीत निर्देशक प्रसाद जी ही थे। गीता जी ने इसमें दो गाने गाए, दो पंक्तियां गीता दत्त ने इस गीत में गाए और उन्होंने बखूबी इस गीत को गाया। यहां हम आपको ये भी बताते चलें कि उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थीं और अगले साल से उन्होंने हनुमान प्रसाद की अन्य फिल्मों के लिए भी गाना गाना शुरू कर दिया, जिनमें कुछ बेहद पसंद किए जाने वाले गीत रहे, जैसे नैनों की प्याली से होंठों की मदिरा और नेहा लगा के मुख मोड़ गया, फिल्म रसीली के लिए और लूरी आजा रे निंदिया आजा पार्श्व गायक पारुल घोष के साथ इन्होंने फिल्म नई माँ के लिए गाया। आइए, ऐसे बहुत सारे गीत हैं गीता दत्त के गाए हुए गीत जो बरबस ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 का ये खूबसूरत गीत, जिसे मोहम्मद रफी के साथ गीता दत्त ने गाया।

0: और कार्यक्रम के शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे इन जरूरी संदेशों के बाद।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में स्वागत है। आज का यह सफर हम समर्पित कर रहे हैं मखमली आवाज की मालकिन पार्श्व गायिका गीता दत्त को। श्रोताओं, हम आपको बता दें, फिल्मबाजी के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता दत्त निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में आई और इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 26 मई सन 1953 को विवाह कर लिया। इसी दौरान गीता दत्त जी ने सुधीर दासगुप्ता और अनिल चैटर्जी जैसे उल्लेखनीय संगीत निर्देशकों की धुन पर गाते हुए कई गैर फिल्मी गानों को भी रिकॉर्ड किए। 1957 में गुरुदत्त ने गीता दत्त के साथ गायिका के रूप में फिल्म गोरी जोड़ी बनानी शुरू की। ये सिनेमा स्कोप में भारत की पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन फिल्मांकन के कुछ दिनों में ही इस परियोजना को रोक दिया गया और कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस बात से दुखी होकर गीता दत्त जमाने को ही नहीं खुद को भी भूल जाने की कोशिश करने लगी, जिसका उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। और जब उन्होंने 1958 में एसडी बर्मन ने के अपनी धुनों में मुख्य भूमिका के रूप में उनको चुना तो जिंदगी से मायूस हो चुकी गीता आरडी बर्मन जी के मानकों को पूरा करने में विफल रही। 1964 में गुरुदत्त के अचानक गुजर जाने के बाद पहले से भी कई बार वो खुद को खत्म

करने की कोशिश कर चुके गीता दत्त ने गुरुदत्त के अचानक गुजर जाने के सदमे को काफी दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और काफी बुरा असर पड़ा इनके करियर पर भी। फिर भी इन्होंने काफी सदाबहार नगमे हिंदी सिनेमा को दिए, जिन्होंने मशहूर गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाया। वो खुद अपनी तदबीर और तकदीर से को ना संवार पाए और मोहब्बत खो जाने के गम में जिंदगी भर ये गम उन्हें सताता रहा। लेकिन उन्होंने कई बेमिसाल गीत भी हमें दिए, जिनमें से जाने तूने कहीं, हवा धीरे आना आशा भोसले के साथ, जानू जानू रे और बाबूजी धीरे चलना, कैसा जादू बलम तूने डारा, ए दिल मुझे बता दे पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, जैसे अनगिनत गीत जो है हमें उपहार स्वरूप उन्होंने दिया। गीता दत्त की याद में गीता दत्त के नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए 2013 और 2016 में। आइए हम आपको कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत को। फिल्म है 12 O'Clock।

के अलावा उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी और पंजाबी समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए। नेपाली सदाबहार फिल्म मैथिगर में भी उन्होंने गीत गाए हैं। हम उनके पुण्यतिथि पर देते हैं उनके चाहने वाले और हमारे रेडियो परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। आज का यह कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे थे पार्श्व गायिका गीता दत्त को। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:05 हुए हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में एक पारंपरिक रचना जो गुलाब गैंग फिल्म की थी। और दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ये दिवस 20 जुलाई 1969 को मानव द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरकर मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिवस का उद्देश्य चंद्र अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा, कल्पना और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इसे केवल आस्था और साहित्य का विषय माना जाता था, है ना? किंतु आधुनिक विज्ञान ने इसे अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। आज अनेक देश चंद्रमा पर जल, खनिज संसाधनों तथा भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। भारत ने भी चंद्र अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं के परमाणु को खोजकर विश्व को एक नई दिशा दी, जबकि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला विश्व का पहला तथा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया। इन उपलब्धियों ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और देश की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। ये दिवस युवाओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि उत्पन्न करने का भी प्रेरक अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम है वन मून वन विजन वन फ्यूचर। चित्रलोक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। भारत विद भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुखविंदर सिंह और KMMC सूफी एंसेंबल की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना सुनिए।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21

0: जुलाई शाम 4 बजे
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: होती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनीति चौहान की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के हैं बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों आज विश्व शतरंज दिवस है यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस दिवस का उद्देश्य शतरंज के खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरील धड़कन से। लीजिए सुनिए मंच म्यूजिक हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म का ये गाना।

स्वतंत्रता पूर्व भारत के बंगाल प्रांत का फरीदपुर, आज ये स्थान बांग्लादेश में है। यहीं समृद्ध जमींदारी थी देवेंद्रनाथ घोष राय चौधरी और उनकी पत्नी अमिया देवी की। 23 नवंबर 1930 को इनके घर जन्म लिया गीता घोष राय चौधरी ने। सन 1940 की शुरुआत में देवेंद्रनाथ का परिवार कोलकाता और आसाम स्थानांतरित हो गया। 1942 में गीता रॉय के माता पिता मुंबई के दादर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने आ गए। युवा गीता रॉय ने गायन की बारीकियां सीखी के हनुमान प्रसाद जी से। उन्हीं के संगीत निर्देशन में सन 1946 में गीता रॉय ने 16 बरस की उम्र में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए पार्श्व गायन किया। सन 1947 में गीता रॉय को गायन का अवसर मिला फिल्म दो भाई में, और इस फिल्म के जिस गीत ने गीता रॉय को रातों रात मशहूर कर दिया वो गीत था ये।

1947 में ही गीता रॉय ने अपने संगीत गुरु हनुमान प्रसाद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म रसीदी के लिए पार्श्व गायन किया। गीता दत्त जी की गायकी, उनका अंदाज बहुत अनूठा था। स्वर में भावों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। मिठास और मादकता उनके स्वर की विशेषता है।

0: होगा।
1: गीता जी के स्वर में उम्र जैसे ठहर जाती है, लहकता बहकता उनका स्वर जब कानों से भीतर उतरता है तो तन मन भी लहकने बहकने लगते हैं।
0: जाता कहाँ है दीवाने।

फिल्म बाजी के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता जी अभिनेता निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में आई और 26 मई सन 1953 को दोनों ने विवाह कर लिया और गीता रॉय गीता दत्त

0: हिंदी सिनेमा के अलावा गीता दत्त जी ने बांग्ला की कई सफल और लोकप्रिय फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। गीता दत्त संगीतकार ओपी नैयर की भी बहुत ही प्रिय गायिका थी। ओपी नैयर जी ने गीता दत्त से कई यादगार गीत गवाए।
1: तुम जो हुए मेरे हम सफर।

सन 1964 में गुरुदत्त इस दुनिया से विदा हो गए और 20 जुलाई 1972 को गीता दत्त भी इस दुनियाए फानी से चली गई।

भारतीय सिने संगीत को गीता जी ने समृद्ध किया अपनी गायकी से, अपने यादगार गीतों से। जमाना इस महान गायिका को हमेशा याद रखेगा।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता रॉय यानी गीता दत्त पर। स्वर, शोध और आलेख कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:22 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कीजिए स्वीकार श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अरे भाई, ये जानते हैं, शहर की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ साथ आज के मौसम का हाल। श्रोताओं, हम आपको बता दें, शहर में आज योग शिविर का आयोजन किया गया, सुबह 6 बजे। स्थान था झील कैंपस। SIR विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्थान होगा खिरगांव मोमिन गर्ल्स स्कूल और समय होगा पूर्वाहन 10 बजे से। वहीं भागवत गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। स्थान होगा झील सेंटर, समय होगा संध्या 6:30 से। बुढ़वा महादेव मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, सुबह 7 बजे से ये आयोजन शुरू है। वहीं आज के मौसम का हाल बताएं तो आज भी बादल छाने और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जाएगा। अधिकतम आज का तापमान होगा 37.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम होगा 22.0 डिग्री सेल्सियस। वहीं कल के तापमान की बात करें तो कल 21 जुलाई को अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि तापमान की गिरावट या और भी किसी तरह का बदलाव इसमें नहीं देखा जाएगा। वहीं कोडरमा के तापमान की बात करें तो आज कोडरमा का अधिकतम तापमान रहने वाला है 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 23.5 डिग्री सेल्सियस। कल के तापमान की बात करें तो कल कोडरमा में तापमान रहने वाला अधिकतम 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 23.9 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता आज की रहने वाली है 95% अधिकतम आर्द्रता और न्यूनतम आर्द्रता रहेगी 87%। वहीं आज के सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:43 पर और कल सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:16 पर। तो मौसम की इन तमाम जानकारियों के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। चंद्रमा जो अपनी रहस्यमय चमक और कलाओं से हमारी रात को रोशन करता है और कवियों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से प्रेरित भी करता है। बच्चों के लिए चंदा मामा और वैज्ञानिकों के लिए कई तरह के शोधों का ये केंद्र है चंद्रमा, तो कई सुहागिनों के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है और दुआएं मांगी जाती हैं। चंद्रमा शुरू से ही मानव के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहा है और इसीलिए सभी को चंदा मामा बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन चंद्रमा के कई रहस्यों से पर्दा उठाते रहे हैं समय समय पर वैज्ञानिक। और जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की खड्डों वाली सतह पर कदम रखा और कहा, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। ये धरती पर हर देश ने राहत की सांस ली। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस न केवल 20 जुलाई 1969 को ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग का जश्न मनाता है, बल्कि यह दिन हमें अंतरिक्ष कार्यक्रम को सचमुच जमीन पर उतारने के लिए किए गए कठिन परिश्रम की भी याद दिलाता है। चंद्र दिवस पर हमें अंतरिक्ष दौड़ के उन अनोखे और गहन क्षणों को भी याद करना चाहिए। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले इतिहास के पहले इंसान बने। भव्य अपोलो 11 मिशन 1960 के दशक के अंत तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य की घोषणा के 8 साल बाद हुआ था। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के मिशन का विचार तब आया जब राष्ट्रपति कैनेडी ने 1961 में कांग्रेस के एक विशेष संयुक्त सत्र में अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस देश को इस दशक के समाप्त होने से पहले चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। पहला मानव रहित अपोलो मिशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा शुरू किया गया था, जो उनके इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा 5 साल के प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद शुरू किया गया था। पहला मिशन लॉन्च स्पेसक्राफ्ट वाहन की रचनात्मक लचीलेपन के कारण एक परीक्षण चरण के रूप में कार्य करता था। दोस्तों, 16 जुलाई सन 1969 को सुबह 9:32 पर पूरी दुनिया ने अपोलो 11 को कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरते देखा, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। नील आर्मस्ट्रांग इस मिशन के कमांडर थे। अंतरिक्ष यान 3 दिन बाद 19 जुलाई को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अगले दिन चंद्र मॉड्यूल ईगल मुख्य कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया, जिसे आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने संचालित किया था। जब ईगल ने चंद्रमा की सतह को छुआ तो आर्मस्ट्रांग ने ह्यूस्टन टेक्सास में मिशन कंट्रोल को अपना ऐतिहासिक संदेश रेडियो पर भेजा, ईगल उतर चुका है। रात 10:39 आर्मस्ट्रांग चंद्र मॉड्यूल से बाहर निकले और सीढ़ी से नीचे उतरे। मॉड्यूल से जुड़े एक टेलीविजन द्वारा कैमरे पर उनकी प्रगति रिकॉर्ड की गई, जो पृथ्वी पर वापस सिग्नल भेज रहा था, जहां दुनिया सांस रोककर देख रही थी। रात
10:56 पर आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धूल भरी सतह पर कदम रखा। ऐतिहासिक उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में। यह दिन अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग का सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन विभिन्न देशों द्वारा चंद्रमा की खोज की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भविष्य में चंद्र संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और चंद्रमा के सतत अन्वेषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन दुनिया भर के युवाओं और छात्रों के बीच खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का काम करता है। यूं तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन वो सूर्य की रोशनी से रोशन होता है और हमें शीतलता प्रदान करता है।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस की इन तमाम जानकारियों के बाद अब आइए हम जानते हैं आज विश्व शतरंज दिवस के बारे में। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। खेल चाहे बचपन में खेला गया खेल हो या फिर बड़े होने पर किसी प्रतियोगिता के आधार पर खेला गया खेल, सभी हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। खेल से हमारे जीवन में तार्किक बुद्धि, धैर्य और अनुशासन जैसे बेहतरीन गुणों का विकास होता है। खेल हमें प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भी सिखाता है, शारीरिक और मानसिक मजबूती भी प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के खेल हमें इन सब के अलावा अलग अलग तरह से मनोरंजन भी करते हैं। विभिन्न खेलों में से एक है शतरंज खेल, जो काले सफेद रंगों वाले चौखानों और हाथी, घोड़ा, सिपाही, वजीर, राजा, रानी जैसे अन्य मोहरे के चालों के साथ खेला जाता है। इस खेल को अब प्रतियोगिता के तौर पर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। शतरंज वास्तव में केवल एक खेल नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और गहरी बुद्धिमत्ता का एक उत्कृष्ट सम्मिश्रण भी है। इसकी शुरुआत भारत में ही 1500 वर्ष से भी पहले हुई थी और इसे अक्सर दिमाग की सबसे बेहतरीन कसरत माना जाता है। इसमें हर चाल के पीछे एक गहरी योजना होती है। खिलाड़ी को अपनी चाल के साथ साथ विरोधी की अगली चाल को भी अनुमान लगाकर खेलना पड़ता है, जिससे खिलाड़ियों में दूरदर्शिता और तार्किक सोच विकसित होती है। इस खेल में एक सफल खिलाड़ी कभी भी हड़बड़ी में फैसले नहीं लेता, उसे सही मौके का इंतजार करना होता है, जिससे धैर्य और संयम की भावना पनपती है। वहीं भावनाओं पर नियंत्रण के आधार पर ही दबाव की स्थिति में शांत रहना और गलतियों से न घबराना इस खेल की सबसे बड़ी कुंजी होती है। सरल नियमों और असीम जटिलता वाले खेल शतरंज को नियमित रूप से खेलने पर मन की एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है और अल्जाइमर यानी भूलने की मानसिक बीमारी की भी रोकथाम होती है। इसीलिए इस खेल को जरूर खेलना चाहिए। उम्मीद है आज विश्व शतरंज दिवस के इस अवसर पर एक छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सबों को विश्व शतरंज दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

और अब आइए जानते हैं कार्यक्रम में आगे आज का इतिहास। आज की ही तारीख को अलग अलग ईस्वियों में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, उनकी एक छोटी सी झलकियां आइए हम जानते हैं। श्रोताओं, आज ही की तारीख को 1997 में तिस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझौता हुआ था। 1999 में आज ही की तारीख को यूआर राव यूनिस्पेस 3 अंतरिक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित स्पेन में प्रथम बौद्ध स्तूप का उद्घाटन हुआ था। आज की तारीख को 2002 ईस्वी में उत्तर व दक्षिण कोरिया ने आपस में वायुयान सेना की शुरुआत की थी और सन 2007 में आज की तारीख को भारत माफ कीजिएगा पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने मुशर्रफ सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को पद पर पुनः बहाली का निर्णय दिया। आज की तारीख को सन 2008 ईस्वी में अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडलीजा राइस ने भारतीय अमेरिकी डॉक्टर जयंत पाटिल के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। 2017 में आज की तारीख को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। वहीं आज ही की तारीख को अलग अलग ईस्वियों में महान हस्तियों ने जो जन्म लिया उनके बारे में आइए जानते हैं। आज ही की तारीख को 1989 ईस्वी में अरुणिमा सिन्हा जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला हैं, इनका जन्म हुआ। 1969 में कलिखो पुल जो अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुए, इनका भी जन्म हुआ। नसरुद्दीन शाह जो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध और प्रभावशाली अभिनेता हैं, इनका भी जन्म हुआ 1950 ईस्वी में आज की तारीख को। 1939 ईस्वी में बीडी मिश्रा जो भारतीय सेना के ब्रिगेडियर हुए जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी पदभार संभाला, इनका जन्म हुआ। 1929 ईस्वी में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता जुबली कुमार राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ आज की तारीख को 1929 में। 1921 ईस्वी में आज ही की तारीख को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत और तबला वादक रहे समता प्रसाद का भी जन्म हुआ। श्रोताओं, हम आपको बता दें 20 जुलाई 1929 को राजेंद्र कुमार, जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के सियालकोट में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही अभिनेता बनने की चाह रखते थे राजेंद्र कुमार। एक मध्यम वर्गीय परिवार में होने के बावजूद भी उन्होंने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा और मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने पिता द्वारा दी गई घड़ी को बेचा और मुंबई आ गए। अपनी किस्मत बदलने का हौसला उन्होंने किसी से नहीं लिया था। राजेंद्र कुमार ने कई सारे बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया जिनमें गूंज उठी शहनाई, ललकार, मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज और भी कई सारी हिट फिल्में हैं इनकी झोली में। साथ ही इन्होंने निर्देशन के तौर पर भी अपने करियर को एक नई दिशा दी और बतौर निर्माता निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी लव स्टोरी, जिसमें इनके बेटे कुमार गौरव ने अभिनय किया जो अपने समय की कड़ी हिट बहुत बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपने पुत्र कुमार गौरव को लॉन्च किया था। साथ ही उन्होंने फूल, जरूरत, लवर्स आदि फिल्मों का निर्माण भी किया। इनके करियर में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया। आइए हम आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म का गीत।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। अब आइए जानते हैं आज की तारीख को किन किन महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा। आज हम आपको बता दें, सन 2019 में शीला दीक्षित, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और केरल की पूर्व राज्यपाल रहीं, इनका निधन हो गया। 2016 ईस्वी में आज ही की तारीख को हाशिम अंसारी, अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मुख्य पैरोकार थे, इनका निधन हो गया। अन्ना चांडी, जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश थीं, इनका निधन हुआ आज ही की तारीख को 1966 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक रहे, इनका निधन हो गया था। 1922 ईस्वी में आज ही की तारीख को चंद्रनाथ शर्मा, जो असम राज्य के प्रथम असहयोगी और असम में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक रहे, इनका भी निधन हो गया। 1978 में दक्षिणानी विलायुत्थन, जो भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थी, इनका भी निधन हो गया। 1982 ईस्वी में आज की तारीख को मीरा बेन, जो

एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की पुत्री थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। इनका निधन हो गया। बटुकेश्वर दत्त जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, इनका भी निधन हो गया था आज ही की तारीख को सन 1965 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में आज ही की तारीख को रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी रही शारदा देवी का भी निधन हो गया था। वहीं 1972 ईस्वी में आज ही की तारीख को गीता दत्त जो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही हिंदी सिनेमा की, इनका भी निधन हो गया। हम आपको बता दें, गीता दत्त आखिरी बार 1972 में मिडनाइट फिल्म के लिए गीत गाई। फिर इसी साल एक अजीम शख्सियत गीता रही गीता दत्त ने बेशकीमती तोहफा देने वाले देकर हम संगीत प्रेमियों को वर्ष 1972 में ही आज ही की तारीख को महज 41 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं, कई अपने अधूरे सपनों को छोड़कर। आइए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में आगे गीता दत्त के गाए इस गीत को।

और अब भाई कार्यक्रम में थोड़ा समय और बच रहा है तो हम आपको अखबारों की सुर्खियों से रूबरू करवा दें। श्रोताओं, हम आपको बता दें, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होने जा रही है। उपायुक्त हेमंती सती ने जिले में नशा उन्मूलन को लेकर व्यापक रणनीति अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना पर चर्चा की है। उन्होंने इसके निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है। उपायुक्त समाहरणालय के सभागार में नार्को कोऑर्डिनेशन समिति के

समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों से विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें, देश भर में चर्चा का विषय बना नीट लीक पेपर मामले में सोनम वांगचुक के समर्थन में युवाओं ने किया प्रदर्शन। रांची में अल्बर्ट एका चौक पर रविवार को रांची के छात्र छात्राओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों युवा लगातार हो रहे पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों के संघर्ष के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। वहीं आपको बताएं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में 19,076 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कल इसकी परीक्षा थी और कई भारी संख्या में जो है अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। आपको बता दें, देवघर में 10 दिन बाद शुरू होगा श्रावणी मेला। प्लस टू शिक्षक नियुक्ति में सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आज से शुरू होगी। सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 को एक पाली में होनी तय हुई है। वहीं आपको बता दें, राज्य में सुखाड़ की आशंका, सामान्य से 38% कम बारिश, सिर्फ 18% खेतों में लगी फसल। पलामू, उत्तरी व दक्षिणी छोटा नागपुर में हालत सबसे खराब। विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों को भेजा दिशा निर्देश। वज्रपात से 3 झुलसे, 1 गंभीर। श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, जैसे वज्रपात होना और कई सारे जीव जंतुओं का सक्रिय हो जाना, जो जहरीले होते हैं तो उन्हें काटने का, डसने का भी खतरा हमारे आसपास बना रहता है। तो इससे आप बचकर रहें। जब भी आपको सांप डसने, खेत वगैरह में काम करने के दौरान सांप डस जाए तो उसका जरूर आकर के हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। इसका इलाज मुफ्त होता है। घर में इलाज करवाने से कई बार लोगों की मौत हो जाती है, तो इस तरह की लापरवाही से आप बचें। वहीं आपको बताएं, नेपाल के पूर्वी रुकुम में 5.0 तीव्रता का भूकंप नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के पूर्वी रुकुम जिले में रविवार को 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र पूर्वी रुकुम के कोल क्षेत्र में था, जो काठमांडू से 400 मीटर पश्चिमी में स्थित है। वहीं तेल टैंकर का समुद्री डाकुओं ने किया अपहरण। यमन के तट के निकट तंजानिया के ध्वज वाले एक तेल टैंकर का संदिग्ध सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने तथा लोगों के बीच पारस्परिक संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से इस यात्रा पर रवाना हुई हैं। अगली खबर से आपको रूबरू करवाएं तो सरायकेला और चंपुआ में वज्रपात से 3 की मौत, 5 घायल। खेल जगत से आपको रूबरू करवाएं तो सिंधु ने पहली बार खिताब जीता, इतिहास में नाम दर्ज कराया। विश्व चैंपियनशिप में पदक की उम्मीदें बढ़ी। सिंधु से अब 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6ठे पदक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं विश्व जूनियर स्क्वाश में अनाहत को शीर्ष वरीयता, काजल ने लगाया स्वर्णिम दांव, अंतिम नेहा को रजत। हॉकी फाइव्स, भारत की नजरें विश्व कप पर। कुश्ती संघ ने अपने नए संविधान को दी मंजूरी। और अभी इन्हीं खबरों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम सुन रहे थे वंदे भारतम एल्बम से विशाल मिश्रा की आवाज में, जिसे लिखा मनोज मुंतसर ने और आर्को ने इसे संगीतबद्ध किया, इस खूबसूरत से देशभक्ति गीत को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि एक बहुत खूबसूरत से आवाज में, एक बहुत प्यारे से एल्बम से है, दीवाना एल्बम से सुन रहे हैं हम यह गीत, जिसे गाया है सोनू निगम ने, फैज अनवर ने इसे लिखा है और साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: ही है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
6: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
7: जी।
6: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
5: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में, जिसे लिखा असलम ने और लकी अली ने ही संगीतबद्ध किया इस सुंदर से गीत को। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है वेलवेट वॉइस हरिहरन के इस एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने ही और लिखा है मुशीर झुंझुनाविनी ने।

हम सुन रहे थे ये गीत ट्रैफिक सिग्नल से, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में। कैलाश शर्मा ने इसे लिखा है और संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस सॉन्ग, ब्रीदलेस एल्बम से शंकर महादेवन की आवाज में, जिसे संगीत बद्ध किया शंकर महादेवन ने और लिखा जावेद अख्तर ने।

मेरी जान, मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है

हम सुन रहे थे जान एल्बम का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, जिसे बोल दिए फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

0: हम सुन रहे थे तुम आए एल्बम से अलका याग्निक हरिहरन की आवाज में। जावेद अख्तर के पोल और राजू सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया इस खूबसूरत से नगमे को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे

हम सुन रहे थे जाने मन फिल्म का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, गुलजार के बोल और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं ये गीत लकी अली सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सुर से। इसे गाया लकी अली और सुनिधि चौहान ने, निदा फाजली के बोल और एमएम करीम के संगीत के साथ। आज के कार्यक्रम रंग तरंग में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: रंग

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्यायसंगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। बस थोड़ी ही देर के बाद

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं बहुत सुनहरी सी यादें, और आज याद करने का दिन है गीता दत्त, अभिनेत्री गीता दत्त का, गायिका गीता दत्त का। आज पुण्यतिथि है उनकी। आज ही के दिन हम याद करेंगे अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को और अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है गीता दत्त ने।

0: हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का यह गीत, गीता दत्त ने जिसे गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
6: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
5: जी।
6: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये

0: सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्फिडेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्मदिवस है तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

0: हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में, गुलजार के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं, यशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

0: दे।
1: हम सुन रहे थे सुनैना मूवी फिल्म का यह गीत, जिसे गाया यशोदास ने रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत, इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, स्वीकार करें। आप सभी जानते हैं सुरीला सफर में हम सब लेकर आते हैं कुछ बातें, कुछ गीत और कुछ प्यारे से किस्से और कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो हम आपस में साझा करते हैं उस समय काल को। इबारत एक लिखी जाती है हमारे द्वारा जिसे हम भेजते हैं सोशल मीडिया पर, और यही जो इबारत है वह हमने भी आज भेजी है और उस इबारत को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। इबारत है कि चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों के रिश्ते छोड़ गया, देखो वो परदेश चला गया और वो परदेसी हो गया। बस इबारत इतनी ही है और इस इबारत को लिखने के बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम वो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी सी कविता कहें या कुछ चंद पंक्तियां कहें उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि नयन भरे नीर मन होता अधीर, जिया मैं टीस यह समाई है, एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है कि एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, सब बातें हैं। और इन्हीं बातों के बीच में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पहली बार इतनी छोटी मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली, दिल को चीर देने वाली बहुत ही गहन पंक्तियों को साझा किया गया है। रिश्तों की गर्माहट चंद सिक्कों की खनखनाहट के सामने कच्ची दीवार की तरह ढह जाती है। स्वार्थ परायणता और पैसे के पीछे की पागलपंती दौड़ मानवीय एहसासों और संबंधों को निर्लज्जता से मिटा देता है और हमेशा से पैसे ने एक रिश्ते से अधिक अपने को अधिक ताकतवर बनवाया है। जी, किसी हद तक आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की सच्चाई से जुड़ी, सच्चाई से भरी है। जहां रिश्ते नाते सब धन दौलत तराजू में तौले जाते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने ईमान को भी बेच सकता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने फिल्म सट्टा बाजार का जिक्र किया है यहाँ पर कि उन्होंने लिखा है कि गुलशन बाबरा ने लिखा हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत कुछ कह जाता है कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है। जी, आपकी बात भी सही है। और इसके साथ आपने एक और दूसरी फिल्म का भी यहाँ पर कहा है कि फिल्म पहचान में भी पैसों की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकले जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी इंसान परदेश तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे फासले सिर्फ शहरों के नहीं रिश्तों के भी हो जाते हैं। सच तो यही कि चंद सिक्के जिंदगी चला सकते हैं, मगर अपनों की आवाज, उनका साथ और उनका अपनापन किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई लालच में अपने अमूल्य पारिवारिक संबंधों, प्रेम और अपनों के साथ कुछ पीछे छोड़ देता है। बेहतर भविष्य और धन कमाने की होड़ में ये व्यक्ति अपने घर आंगन को छोड़ दूसरे देश चला जाता है। त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति अपनों के दिल की धड़कन हुआ करता था और दूर जाते ही अपनों के लिए परदेसी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दें। और जब हम बात इस परदेसी या परदेशी विषय पर कर रहे हैं, तो ये जो परदेश में जाते हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हमारे जेहन में आती हैं। पुरानी फिल्मों में तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में अभी आ रही है, ये प्रश्न है आपके लिए कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जिसमें बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। जरा बताइएगा उस फिल्म का नाम। अगर आपके दिमाग में कोई भी फिल्म का नाम आता है तो जरूर से हमारे साथ साझा कीजिए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिमाग में अभी आ रही है।

कि बेटा गया है या बेटी गई है परदेश पैसे कमाने के लिए, विवाह करके नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए बेटा या बेटी बाहर गए हैं, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत को लिखा किसने है। इसके गीतकार का नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आप सबसे हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस फिल्म के गीतकार, इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी। बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है।
1: The flood situation has worsened as incessant rain continues.
0: जो फिल्म का नाम है नाम, एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है, बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि बरसात।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का है मामला।

0: जी कार्यालय द्वारा ICSSR के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहो टोला में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बरसात में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह बिरहोरों के स्वास्थ्य की करेगी जांच। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में फिर हुए भूधसान की घटना में करीब 6 घर हुए ध्वस्त। BCCL प्रबंधन की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन से महिलाओं के लिए बन रहे हैं स्वावलंबी बनने के अवसर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहो मानसून हो या फिर मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने राज्य के थानों में CCTV कैमरे लगाने से जुड़े मामलों में बिना सक्षम स्वीकृति के सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजी थी। सरकार ने कहा है कि संवेदनशील मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य CAG ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित मौलिक शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करके सार्वजनिक वित्त, शासन, राजकोषीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र में खर्च और सतत विकास पर शोध और जानकारीपूर्ण चर्चा को बढ़ावा देना है। राज्य के शहरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जहां मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भरकर जमा कर सकेंगे। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की गई है। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहो टोला में कुछ बच्चों और ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी भोला पांडे और रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष राज के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पूरे टोला में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी भोला पांडे ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह यहां पहुंचकर बिरहोरों के स्वास्थ्य की जांच करेगी।
2: हम लोग ने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो कि वायरल फीवर्स वगैरह हैं, छोटे छोटे फीवर्स में, ज्यादा वैसा कोई क्रिटिकल केस नहीं है, तो उसके आधार पर अभी हम लोग दवाई दे दिए हैं और योजना बनाई है कि पहले जो है मासिक को यहाँ पे विजिट होता था, उसको अभी जब तक बरसात रहेगा तब तक हम लोग इसको साप्ताहिक कर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक सांस्कृतिक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही तेजी से विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह जिले के जमुआ थाना परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोग खाली पड़े बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करें। श्री मरांडी ने यहां कहा कि राज्य सरकार सभी थानों का आधुनिकीकरण करे।
1: राज्य सरकार को केंद्र से पैसा लेनी चाहिए और जितना भी राज्य में थाना है सब थाना का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हर लोगों को अच्छे बैठने की जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि थाना को सीधे हम सजा का ही केंद्र क्यों बनावे, यहाँ लोग आवे तो लोग बैठ सके, उनको बैठने की भी अच्छी जगह हो, ये भव्य तरीके से बनाने। और जमुआ जिस प्रकार से जगह है तो यहाँ तो और विशेष सरकार को ध्यान देनी चाहिए, हम भी सरकार के संज्ञान में लाएंगे।
0: धनबाद की रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में कल एक बार फिर भूधसान की घटना हुई। लगातार हो रही बारिश के बीच ही भूधसान में करीब आधा दर्जन घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित बस्ती को पुनर्वास के लिए पहले ही खाली करा दिया है। प्रबंधन की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। आज सुबह घरेलू शेयर बाजार सूचकांक में लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 592 अंक गिरकर 77,559 पर और निफ्टी 147 अंक गिरकर 24,147 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अब से कुछ घंटों में चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत हजारीबाग में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए हजारीबाग की लगभग 15 महिलाएं 30,000 से अधिक जर्सी तैयार कर रही है। इस संबंध में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म तो दे ही रहा है, साथ ही महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है।
2: नमो फुटबॉल टूर्नामेंट केवल खेल महोत्सव जो है केवल खेल नहीं रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ रहा है। जैसे पिछले बार हम लोगों का लगभग 24,000 जर्सी हम लोगों ने दिया, इस बार भी हम लोग का टारगेट है कि लगभग 30,000 के करीब में जर्सी दे। ये 30,000 यही के लोगों के द्वारा, यही के महिलाओं के द्वारा दिया जाए।
0: और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले की मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां समेत दो अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। खूटी चाईबासा मार्ग पर मुरहु थाना के कुड़की नाला पुल पर आज सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार चारों युवक बच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का है मामला। सीएजी कार्यालय द्वारा आईसीएसएसआर के सहयोग से देशभर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहो टोला में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बरसात में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह बिरहोरों के स्वास्थ्य की करेगी जांच। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में फिर हुए भूधसान की घटना में करीब 6 घर हुए ध्वस्त। बीसीसीएल प्रबंधन की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन से महिलाओं के लिए बन रहे हैं स्वावलंबी बनने के अवसर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने

आप में बड़ी चुनौती है क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं वहां मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि वह उनके देश के नहीं है, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व, उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, जब लोग दूर रहते हैं ना तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीतमाला की भी बड़ी याद आती थी। जी अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेसी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार हर खुशी हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी और परदेसी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव अपने शहर अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया है यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेसी होने का मौका मिले तो आप अपने देश से कहां जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे या किस जगह पर जाकर परदेसी बनना चाहेंगे, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन है, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी ज़रूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन है जो फ्लोरिडा अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूमकर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके पति जब उनके बच्चे छोटे थे तब वो NGC में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए, तो बच्चों के साथ सास ससुर देवानंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई, तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी, जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं विदेश में खाने पीने की समस्या होती है, अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहाँ पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है इस चीज़ के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, जरूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूँ और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है, सुरेश वाडकर और बेला की आवाज में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है, बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी, आप सबने सही पहचाना, हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे, ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीज़ें भी तो नई नई मिलती है ना, कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश

जाकर रहते हैं, वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो?

दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फोन करे तब पता पड़ता है। और कई बार वीजा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है। दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है। यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली, उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, वो बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे कौशोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ रोज रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें प्रदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुँह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा, अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

और इसी के साथ हमारे एक श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहाँ है, जहाँ की मिट्टी वहाँ से खान पान, वहाँ से गोली और वहाँ अपनापन, दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

0: त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, बहुत मजबूत होता है वो इंसान।
1: हाँ।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है।

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को है। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:00 चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना

0: है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
0: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।

0: है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने, नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
1: यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली, आगामी योजनाओं और अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। राज्य में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, नए पौधरोपण अभियानों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह शहर के विकास के लिए 17,39,00,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का आज शिलान्यास किया है। मौके पर मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इन 119 योजनाओं के धरातल पर उतरने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। देवघर के महापौर रवि कुमार राउत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर शहर के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई इस बैठक में महापौर ने बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के तुपदाना थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में पकड़े गए कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कैग और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च मिलकर देश भर के कॉलेज छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित मौलिक शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा, पलामू और लातेहार में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। इस बीच दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के लटुलिया गांव में आज खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत गुमला जिला मुख्यालय पहुंची। जिला प्रशासन, खेल विभाग और स्थानीय खेल प्रेमियों ने सेना के जवानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम में प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेला गया। भारतीय सशस्त्र बल और झारखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन 25 जुलाई से राजधानी रांची में होगा। मौके पर उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि यहां डूरंट कप जैसी ऐतिहासिक ट्रॉफी का आना हमारे युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बेहद गौरवशाली और प्रेरणादायक क्षण है।
2: डूरेंट कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट का कप है, और इस टूर्नामेंट कप का गुमला जिला में आगमन होना निश्चित तौर पर हमारे गुमला जिला के खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। और इससे हमारे गुमला के खिलाड़ी हैं, गुमला एक खेलों की नगरी माना जाता है, उसे प्रेरणा मिलेगी।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहने या दो वर्मा सखियां साथ में,
1: क्या बात है। देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम बाकी बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की

0: बात करने वाले हैं
1: प्रादेशिक। और बारिश के मौसम में कुछ खास व्यंजन बनते हैं
0: जी,
1: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
0: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
1: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौके पर बनाई जाती है या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है, और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
1: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
0: बिल्कुल,
1: उम्र होती है और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत 2 महीने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये। तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
5: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
4: आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
5: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरुसेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और रामदुलारी रानी बनी बैठी है।
4: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
4: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा है कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गृहस्थी की सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साय से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
5: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए।

0: इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी। मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वा मुझे जलील करते रहते हैं बस।
1: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
2: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है, तो वक्त निकालना पड़ा।
1: रूप कुमारी ने बात बनाई।
0: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
2: जी
0: जी।
1: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
2: ये घर दीदी, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, हैं?
1: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
0: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
1: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
2: मुझे तो इस घर में, ऐसे घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में। सुन रहे हैं आप दीदी?
0: सुन रही।
2: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ?
1: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में हैं, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
2: दीदी आपके लिए मेरी जान हाजिर है, दीदी आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ, मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है, मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं, हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरे खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी एक मिनट, ये
0: क्या
2: ये
0: है?
2: थोड़े से रुपए।
0: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। ये इतने रुपए?
2: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए, जो ईमान और उसूल के उपासक हैं उन्हें दौलत लात मारती है, दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, है? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हाँ, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा मैं भी, अब मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
1: उमानाथ ने आगे कहा,
3: अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
1: गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली, यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी, जो तरगीबे कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
0: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को

0: टकसाता रहता है। वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
1: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
2: सुनो यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
1: रूप कुमारी ने उसके तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
0: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
2: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
0: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
2: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
0: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
2: मगर एक बात तो है।
0: क्या?
2: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
0: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
2: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
0: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
2: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
0: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
2: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
1: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
0: सुनो तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे डुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
3: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी, यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है, और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भर कर लेकर आते हैं, और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है। तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है, और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई, और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था, और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
1: बिल्कुल, और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिल जाता था। और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता,
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना, तो डोरमेट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ के उनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें, और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें, जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है, इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
0: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी की हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया था। बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
1: बिल्कुल। और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाए। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
0: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
1: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपम्पों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है और गांव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना, तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
0: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है। इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है, बारिश का वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण

0: कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी
1: एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है। उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात करें कि भूजल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
0: क्या बात है।
1: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
0: जी, कितनी बहुत अच्छी बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
1: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती है, वो एक अलग चीज। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है।
1: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई, ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम कह सकते कि भाई आप इस पर अपना है, मेरा सुन के ना अपना है, जो उन्होंने लिखा वो अपनी यादें लिखी हैं।
1: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लिखकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात करेंगे।
6: तो पिन्नी जो है ना, पंजाब का जो व्यंजन है, ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा, मैदा, किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है, इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर

0: आपको स्वाद ज्यादा चाहिए तो आप दो चम्मच भी ले लीजिए। काजू बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आंच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल। और देखो एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मथनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च दालचीनी लौंग इलायची प्याज डालिए और और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लाल मिर्च पाउडर हल्दी टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिलाइए और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
0: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सेहतनामा कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोणी का रांची केंद्र है। दिन के 4 बजे हैं। सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के वांछित उग्रवादी नरेश गंजू और रविकांत को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि इस उग्रवादी पर हत्या, रंगदारी और पुलिस पर हमले सहित 6 मामले दर्ज थे। पुलिस और एसएसबी का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। हजारीबाग पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार के निर्देश पर 28 टीमों में शामिल 91 पुलिसकर्मियों ने यह कार्रवाई की। एसपी ने अपराधियों की धरपकड़ जारी रखने की बात कहते हुए आम जनता से सहयोग की अपील की है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में आज करंट लगने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। कोटेक सेरा स्थित मौसीबाड़ी के पास छात्र एक रथ को घुमा रहे थे, तभी वह 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में विधायक कल्पना सोरेन ने सदस्यों के साथ महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता अब वह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वर्ण रेखा महिला समिति की अध्यक्ष रेणु सहगल ने पतरातु पीवीयूएनएल टाउनशिप में प्रगति 2.0 टेलरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ी, शाह कॉलोनी और कटिया गांवों की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से ग्रामीण महिलाएं कौशल विकास कर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
4: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
4: जी।
3: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया, तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है, तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है
4: जी। और जिनको ये समस्या होती है, तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए, वो क्या है तरीका?
3: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं
4: जी।
3: ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है
4: जी,
3: लेकिन
4: जी,
3: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में। काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
4: जी जी।
3: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है। तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
4: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
3: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है।
4: जी हाँ।
3: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता
4: जी,
3: है
4: जी जी।
3: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं।
4: अच्छा।
3: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
4: जी।
3: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
4: जी जी।
3: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं। सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए। अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है। मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है।
4: बिल्कुल।
3: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है।
4: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
3: सो ये दो चीज होती है। अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है
4: जी।
3: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और उसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है
4: जी।
3: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है
4: जी।
3: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है
4: जी।
3: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं
4: जी।
3: क्योंकि नहीं तो वो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं
4: जी। और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है।
3: एब्सोल्युटली।
4: कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन
3: और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई
4: तो,
3: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
4: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की, तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार?
3: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
4: जी,
3: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
4: जी।
3: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है। दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है
4: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
3: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
4: जी, जी,
3: और उनका एक अच्छा गाना है मुहे रंग दो लाल।
4: क्या बात,
3: बाजीराव मस्तानी से
4: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल.
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इंपॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
2: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और वडोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है।
4: और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
5: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
4: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
4: ओ, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
3: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
6: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
3: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारे ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
4: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
5: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है।
8: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
7: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
3: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
8: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
3: क्यों दे दो?
7: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
8: भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
3: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
8: तुम राजकुमार हो, इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
5: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
9: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
5: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
3: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
7: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
3: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
10: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
11: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
10: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
11: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
5: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
12: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? इस दक्कनी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा है सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे
11: दक्कन है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को

0: अपने पास बुलाइए। ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
1: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
0: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज जय हो,
5: महाराज जय हो, महाराज जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अहम तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
1: श्वेत केतु
2: जी पिताजी,
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
2: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
2: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
2: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय

0: ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जीतात,
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी,
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात, क्या तुम जानते हो
0: हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वनियंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।

0: श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करघट्टा। राज्य कैबिनेट की बैठक कल शाम 3 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से अदालत के आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वेतन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जामताड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण के घर हुई पुलिस छापेमारी को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले को उठाने के कारण भाजपा नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने बोकारो समाहरणालय में राजस्व संग्रह, डीएमएफटी योजनाओं और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक की। आयुक्त ने वन, खनन, निबंधन, उत्पाद और नगर निगम चास सहित विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का जायजा लिया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर आरआईटी मोड़ के पास दिन दहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। दो युवकों के आपसी विवाद में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

0: कोई मॉडल पुराना लगता है,
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो।
2: इक्कीस जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
3: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
2: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
3: आदमी मुसाफिर है।
2: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
4: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरो से, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के देने से प्रणाम जोहार और स्वागत है कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम में हमने जुट गए ये तो बतावा ग्रामीण श्रोता भाई बहन कैसन है खेती बारी के हालचाल तोर कैसन हो घर दूरा चेंगा छुट्टियन के पढ़ाई लिखाई कैसन चल रहे है। हम उम्मीद कर रही है कि सभी किसान भाई बहन सब बेस्तरी होती और अपन अपन काम काज बेस्तरी से कर रही होती। तो हम आज बात करबे कि भाई खरीफ फसल के कैसे हमनी देखभाल करिए। तो खरीफ फसल में धान मक्का दलहन से में बहुत ज्यादा देखा कि नमी रहो है और बारिश के कारण भी की टूट लगे के फफूंद लगे के बहुत डर रहो है और साथे साथे रोग भी लगे के बहुत खतरा रहो है। तो एकर बचाव खातिर हम इनके सबसे पहले तो बुआई के समय देखा कि हमने इनके विशेष सावधानी रखेल पड़ते और सबसे पहले तो हमने इनके बीज के उपचारित करके लगावे के चाहिए और हमने के प्रतिरोधक जो किस्म होवे है ना वही किस्म के बीज के चुनाव करे के चाहिए। खरीफ फसल में हम नीम के जल निकासी पर और खर पतवार पर भी बहुत ध्यान देवे के चाहिए। देखा कि बारिश में खर पतवार बहुत हो जाए है और मुख्य फसल के खर पतवार बढ़ावार नहीं होवे दे है। ये लगी खर पतवार के प्रबंधन हम नीम के जरूर करे के चाहिए और जल निकासी बहुत जरूरी है। जमा पानी के निकासी लगी हम नीम के नाली अवश्य बनावे के चाहिए और साथे साथे वर्षा के मौसम में जो देखा कि जो बहुत ज्यादा पानी हो गए ओकरा नाली के निकासी करके बाहर निकाले के हमेशा कोशिश करे के चाहिए। और ये जो खरपतवार के चलते जो मुख्य फसल के बर्बाद नहीं होए देहती खरपतवार एकरा लगी समय समय पे हम इनकी निकौनी भी करते रहे के चाहिए। काहे कि बरसात में तो देखबा कि अनावश्यक घास वगैरह निकल जा है और एकर में देखा कि बहुत कीट भी लगो के डर रहे है जेकरा में कीट में तना छेदक महुआ एक रोग ये सब लग जा है और एकरा नियंत्रण लगी हमने इनके नीम के तेल और MSK के 5% घोल छिड़काव कर देवे के चाहिए। और एक जो प्रमुख रोग झुलसा रोग पीला मोजक तना गलन जड़ सड़न हो है एकरा लगी भी हमने इनके गोबर खाद में ये नीम के तेल वगैरह मिला के खेत में डाले के चाहिए। और देखा कि एक लाइट ट्रप रहो है एकरा में रात के समय में तू खेत में लाइट ट्रप बल्ब और पानी के बर्तन लगाकर हानिकारक कीट के पतंग के नष्ट कर सको है। तो देखा हमने आगे भी बात करबे ग्रामीण श्रोता तो सुन कहानी कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए जरूरी संदेश और साथे साथे वो प्यारा सा गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

देखा अभी हमने सुना लिए इतना बढ़िया गीत और साथे साथे जरूरी संदेश। और गीत सुनने से पहले हमने बात कर लिए कि भाई खरी फसल के हमने कैसे देख रेख करिए और एकर में कीट कैसे हमने प्रबंधन करिए और साथे साथे देखा कि एकरा किस तरह से हमने बचाव करिए और ये जो बारिश के मौसम में हमने कैसे खरी फसल धान मक्का दलहन के खेत के में जो फसल के बचाइए। और जैसन कि भाई देखा अभी के मौसम जो बारिश के मौसम है ग्रामीण श्रोता, और ये बारिश के मौसम में तू देखा बा हमेशा बादल गरजना बिजली चमक चमको है, और यही बिजली गिरे से बहुत तरह के घटना घटे के भी डर रहो है। तो यही आकाशीय बिजली जो गिरे है एकरा से बचे लगी हमें हमने इनके तुरंत पक्का के मकान या बंद गाड़ी में शरण लेवे के चाहिए। और साथे साथे देखा कि बिजली के उपकरण हो गए लो पानी के नल या खिड़की दरवाजा से दूर रहे के चाहिए। खुला मैदान में अगर हम ही हा तो नहीं सब अगर बिजली चमक रह लो तो उकड़ू होकर बैठ जाए के चाहिए और पेड़ के नीचे कभी भी नहीं छुपे के चाहिए। काहे कि अधिकतर पेड़ में भी बिजली गिरे के ज़्यादा आशंका रहो है। और देखा कि जो जेकर पर अगर बिजली गिर भी गेल है तो वो पीड़ित के तुरंत मदद करे के चाहिए और प्राथमिक चिकित्सक के पास ले जावे के चाहिए। आ जेकरा से में अगर बिजली गिर गेल है तो ओकर में करंट नहीं आवो है, यही लगी ओकरा छुए से भी कोई खतरा नहीं है और तू तुरंत ओकर इलाज लगी अस्पताल ले जा सका है। और जो भी किसान भाई बहन अगर खेत बाड़ी में काम कर रही थी जैसे धान रोप रहे थे सब्जी के देखभाल कर रही है तो उन लोग के भी जब ऐसा समय आ जाए बारिश इसके साथ बिजली चमकते और तो एक ऐसे में आपन आपन सब काम का छोड़ के सुरक्षित जगह पर चल जाए के चाहिए। और हमेशा से ये जरूर ध्यान देवे के चाहिए कि पेड़ के नीचे कभी ना छुपे के चाहिए। और यही सब छोट मोट बात अगर हमने ध्यान में देवे तो हम आपन सुरक्षा भी कर सको ही है और साथे साथे जो हमने इसके संगी साथी जो साथ में काम कर रही थी या खेत में तो उन लोग के भी आराम से बचाव कर सके ही। और खासकर देखा कि बिजली जो है बिजली जब चमके चाहे बिजली के तार पोल अगर जरा सा भी गलती से अंधर तूफान से अगर गिर गेल है तो उस सब से हमेशा बच के रह के चाहिए। काहे कि जब पानी

0: के संपर्क में बिजली के तार आवे तो ओकर में और पावर बढ़ जाए, तो एकरा लगी हमेशा से दूर रह के चाहिए, ना कि ओकर पास जाए के चाहिए, ताकि ओकरा में करंट इतना रहे कि थोड़ा वो करंट अपन तरफ खींच भी सके है। तो यही सब ध्यान दे के चाहिए, और तुरंत बिजली के जो जहाँ से संपर्क है वहाँ से काट देवे के चाहिए। तो ये सब ध्यान दे के अपन भी तो सुरक्षा कर सका है, और साथे साथे अपन साथ जो काम काज हथी संगी साथी उन लोग के भी सुरक्षा के बारे में बता सका। चेंगा चुटियन के भी हमेशा ध्यान देवे के चाहे कि जब पानी बरसे बिजली चमके तो घर से बाहर नहीं खेले के चाहे, घर के अंदर ही रहे के चाहे। तो देखा अभी तो समय है धान के बहुत जगह मोरी बुना गेले है किसान भाई बहन, और बहुत जगह तो बारिश हो जाए के कारण बुना भी रह ले। तो ये ऐसने में आज हम एगो बहुत बढ़िया जानकारी लेके ले ही है। महिला कृषक हती जो बताती कि वो धान के उन्नत खेती की तरी से कर रही थी है, और ये महिला कृषक हती सविता देवी, तो सुनल जाए ये जानकारी। श्रोताओं, हम समय समय पर आपकी मुलाकात एक वो सफल किसान से करवाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे एक सफल महिला कृषक जो धान की खेती बड़े पैमाने पर कर रही हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ में नमस्कार।
1: नमस्कार, मेरा नाम है सविता देवी, मेरा गांव का नाम है बाली, ब्लॉक चुरचू ब्लॉक का है, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप धान की खेती कर रहे हैं ना?
1: जी।
0: तो कितने दिन से धान की खेती कर रहे हैं?
1: मतलब 20 साल लगभग हो गया।
0: 20 साल से कर रहे हैं। हाँ, और मतलब कितने जमीन में कर रहे हैं आप खेती?
1: वो बीघा बता के मतलब
0: हाँ, जो आपको सही लगे कितना जमीन में कर।
1: मतलब एकड़ मतलब 15-16-17-18 करके अंदर में।
0: तो आप बहुत बड़े पैमाने पर धान की खेती कर रहे हैं ना? अच्छा, तो आप अभी जो धान की खेती कर रहे हैं तो अभी तो मोरी बुनना आ गया होगा ना?
1: हाँ, 15 दिन हो गया।
0: तो कब बुने थे?
1: मतलब ये महीना जुलाई है ना?
0: हाँ,
1: एक दो जुलाई को किए थे।
0: अच्छा, तो बड़ा हो गया थोड़ा।
1: हाँ, अब बुआई करना है।
0: बुआई करने लायक हो गया?
1: हाँ, पानी भी आ गया तो बुआई कर ही दीजिएगा।
0: हाँ, हाँ, तो अभी खेत में पानी आ गया बुआने लायक ना?
1: हाँ,
0: तो आप अभी कौन से किस्म का बीज लगा रहे हैं?
1: मतलब कवेरी लगाए हैं।
0: अच्छा,
1: और संकर धान लगाए हैं, और यूएस के मतलब जो ईवर धान है, और गौरव वही सब फसल लगाए हैं।
0: इतना सारा लगाए, सब
1: तीन ठो नेशनल लगाए हैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि धान की खेती आप इतने बड़े पैमाने पर कर रही हैं। तो ये जो मौरी बुना गया है, मतलब बुन लिए हैं और वो रोपने लायक हो गया है, तो खेत में कितना पानी रहना चाहिए कि जब वो बुआई
1: हो जाए? मतलब पानी पूरा छपा छप है।
0: हाँ,
1: वो मतलब कि जोताएगा गाड़ी से तो पूरा काद हो जाएगा।
0: हाँ,
1: उसके बाद पानी से लेबर काद मिल जाएगा।
0: हाँ,
1: बस रोपाई हो जाएगा।
0: अच्छा, तो रोपाई उससे हो जाएगा।
1: हाँ,
0: तो अपने रोपते हैं कि ट्रैक्टर से रोपवाते हैं?
1: नहीं, तो अपने से मतलब कि जो हम लोग आते हैं काम करने के लिए।
0: हाँ,
1: तो इससे सब महिला जाएंगे, 10-15-20 जितना मिलेगी उस सबको लगा देंगे, उनको खाना पानी बना देंगे,
0: जाओ लोग सब मिल के।
1: हाँ,
0: तो रोपाई कर। तो एक ही दिन में सब रोप आता है कि समय लगता है?
1: एक सप्ताह समय लगेगा, उतना में प्लॉट में लगाइएगा धान तो एक दिन में होगा,
0: एक सप्ताह लग जाएगा।
1: हाँ, एक सप्ताह 15 दिन के अंदर में मतलब
0: पूरा लग जाएगा।
1: हाँ, मतलब सब झन का हो जाएगा 15 दिन के लगभग।
0: अच्छा,
1: इसलिए नहीं मतलब कि देखिए मेरा सब तो से मतलब हेल्प कर दिया, हम सबको कर दिया।
0: हाँ, हाँ,
1: मतलब एकजुट एकता में बहुत पावर है, जानते करते। हाँ, एकता में बहुत पावर है,
0: तो सब मिल के।
1: हाँ,
0: काम करते हैं, घर परिवार के लोग भी मिल के करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि धान लग जाता है?
1: नहीं,
0: ये जो खेत में धान लगाए हुए हैं तो उसमें धान में तो हमेशा पानी का जरूरत पूरा रहता है, तो अगर मान लेते कि बारिश कभी आता है नहीं आता, वर्षा का पानी में हम लोग निर्भर रहते हैं ना, तो अगर नहीं रहता है पानी का तो फिर जुगाड़ कैसे करते हैं?
1: बगल में तला है।
0: अच्छा,
1: तला से मशीन मतलब कि 16 प्लेट भी है लगा हुआ, तो 16 प्लेट वाला मतलब कि लाइन रहता है, तो उसको जोड़ कर फिर पानी इधर फैला देते हैं, तो पानी फिर पूरा फैल जाता है,
0: फैल जाता है, फिर रोपने लायक हो जाता है,
1: हो जाता है। फिर पानी चल जाने के बाद फिर धान में सूखने सूखा पड़ जाता है तो उस तरफ पानी चला देते हैं। अभी तालाब पूरा भर चुका है पानी से, इधर पानी आया और हम लोग हर दिन, कल भी बहुत पानी आया।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, धान की खेती के लिए पानी की ही जरूरत पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जब धान लग जाता है तो कितने दिन में वो बड़ा

0: और ज्यादा मात्रा में डालना है तो जो घास बनने में दौड़ते हैं वो डालेंगे, और जो लाल कलर का पोटास होता है उसको उपयोग करते हैं।
1: जी तो बहुत अच्छी बात है। और तो कितने दिन में वो बड़ा हो जाता है?
0: मतलब कि अभी लगा देने तो 15 दिन होते हैं, तो मतलब अभी इतना लगा रहे हैं, 15 दिन के बाद इतना इतना हो जाएगा।
1: और उसमें वो धान कब तक आ जाता है?
0: धान अभी मतलब कि देखिए
1: महीना डेढ़ महीना
0: नहीं, अभी नहीं आएगा। मतलब देखिए अभी क्या चीज़ जुलाई है, जुलाई में रोपा कीजिएगा तो जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर के अंदर में मतलब कि जिस समय मतलब रहता है कर्म पूजा दुर्गा पूजा का, उस समय धान पूरा पानी फूल गिरता है ना, उस समय फूट के झाड़ हो जाएगा।
1: अच्छा, मतलब कि फूल आ जाता है।
0: हाँ, फूल आ जाता है। और मतलब कि देखिए अक्टूबर आते है तो उसमें चावल भरा जाता है।
1: अच्छा, चावल
0: और दूधा जाता है। उसके बाद फिर नवंबर में तो फिर कटाना चालू कर देता है, पक जाता है।
1: तो जब धान आ जाता है तो उसको उसमें भी कीड़ा उड़ा लगने का डर रहता है?
0: हाँ, जो धान मतलब की रोमन रहता है और जो जल्दी फूट जाएगा, और किसी का धान नहीं उस समय फूटा तो मतलब कि जो मक्खी चुसता है ना,
1: मक्खी चुसने वाला
0: है, हाँ, चुसने वाला कीड़ा लग जाएगा तो फिर पूरा धान खतरे हो जाए।
1: तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं?
0: उसको बचाने के लिए छिड़काव करना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो किस चीज का छिड़काव करते हैं? कोई घरेलू की नहीं, बाजार से दवाई
0: बाजारे से लाने पड़ता है। तो घरेलू कहाँ से मिले?
1: तो दवाई ला के छिड़काव,
0: हाँ, छिड़काव कर दीजिएगा।
1: दवाई का नाम क्या होगा?
0: बहुत मतलब क्या है, मक्खी को मारने वाला है।
1: अच्छा, वो मांग लेते होंगे कि मक्खी को मारने वाला दवाई,
0: मतलब कि कोरा जनहा फिर सल्फर जैसा है दवा, वो सबको मार दीजिएगा ना, तो मक्खी फिर नहीं।
1: कितना पानी में मिला के छिड़कते होंगे?
0: एक टंकी रहता है उसमें मतलब कि 250 लीटर पानी रहता है, तो उसमें मात्रा रहता है, मतलब डब्बा नापने वाला, डब्बा से नाप के डालिएगा और स्प्रे कर दीजिएगा,
1: तो उससे फिर नहीं लगता है ना
0: कीड़ा, फिर उड़ जाएगा, फिर मर जाएगा। जो रहेगा धान में आएगा वो मर जाएगा, और जो नहीं आएगा वो उड़ान मार देगा।
1: अच्छा, तो इससे बच जाता है ना। तो इसके बाद जब धान लग जाता है तो उसके बाद कटाई कब तक बोले कर हो जाता है?
0: मतलब कि नवंबर
1: में कट,
0: हाँ, नवंबर दिसंबर के अंदर, मतलब जितना लोमन धान होगा वो नवंबर में कट जाएगा, जो थोड़ा मतलब लेट से फूटता उठता है वो दिसंबर ले लेगा।
1: कोई आगे कभी पीछे फूटता,
0: जानबे करते कि कोई मतलब लोमन हो जाता है, कोई जड़न हो जाता है, तो इसी तरह आगे पीछे लग जाता है।
1: अच्छा,
0: तो नवंबर दिसंबर के अंदर में धान कटिंग हो जाता है।
1: अच्छा, तो फिर कट जाता है धान को, उसके बाद फिर इतना खेत में कितना धान हो जाता होगा?
0: कितना मतलब कि जितना मतलब
1: बताइए,
0: उपज मतलब कि ज्यादा हो जाएगा ने, सौ डेढ़ सौ 200 तो लगभग हो जाएगा,
1: हो जाता है।
0: हाँ,
1: तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ी पैमाने पे हो जाता है,
0: उधान में लगाइएगा तो उतना जरूर
1: हो ही जाएगा। हाँ, तो इसके बाद बताइए हमें कि ये धान को जब काट देते हैं, हाँ, तो फिर उसको भंडारण करते होंगे कैसे?
0: हाँ,
1: उसको
0: पूरा उसको समेटिएगा, बोझा बांधिएगा, उसके बाद लाइएगा गाड़ी में लाद कर, उसके बाद जो मशीन आया उसमें डालिएगा
1: तो वो निकल जाएगा।
0: हाँ, तो फिर धान से पूरा झर के निकल जाएगा, उसके बाद अंदर कर लीजिएगा धान हो जाएगा,
1: और उसको फिर बड़े बड़े ड्राम में सब,
0: हाँ, ड्राम में रख नहीं देते हैं,
1: बरसात का मौसम
0: भी मार दीजिएगा।
1: नहीं, बरसात का मौसम है तो उसको बढ़िया से संभाल के,
0: हाँ, संभालिएगा, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो उसको फिर अच्छा से संभालिएगा, उसके बाद फिर ड्राम में डाल के पानी डाल के जो खोखरी जो थोड़ा मोटा उसको छपला को फेंक दीजिएगा, उस फिर उपयोग कीजिएगा, सिझाइएगा, फिर सुखाइएगा,
1: चावल बन जाएगा,
0: चावल बन जाए।
1: अच्छा, तो इसमें घर के लिए भी रखते होंगे खा के, उसका भी बेच देते होंगे?
0: हाँ, ज्यादा मात्रा में होता है तो बेचना पड़ देगा,
1: फिर घर में रखते हैं,
0: बाकी घर में।
1: अच्छा, फिर दोबारा अगर लगाना है अगले साल तो फिर इसी धान को रखते
0: हैं?
1: दूसरा
0: नहीं, ये धान रखिएगा तो ज्यादा उपज नहीं होगा,
1: मतलब
0: नहीं खराब नहीं होगा,
1: लेकिन
0: ज्यादा उपज नहीं होगा, कम होगा। हाँ, और नया वाला बीज लगाएगा तो ज्यादा उपज होगा। हाँ, इसी के चलते नया वाला सब कोई लगाना चाहता है।
1: हाँ, वही अच्छा रहता है कि जिससे आदमी मेहनत करे तो पूरा उसका
0: मेरा लाभ उसका उठा ले।
1: बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात
0: है।
1: तो इस तरह से आप धान का खेती करते हैं, और अच्छी बात है कि इतने बड़े पैमाने पे आप धान की खेती करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सविता देवी की आपकी जानकारी सुनकर सभी महिला ग्रामीण श्रोता भी धान की खेती इतनी अच्छी तरह से करके और लाभ उठाएंगी। तो जो महिला जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से धान की खेती करें?
0: हाँ,
1: बताइए क्या उन लोगों को किस तरह से करना,
0: मतलब कि जो दीदी धान को खेती करना चाहते हैं वो पहले अपना खेत को अच्छा तरह से जोताई करेंगे, उसमें गोबर डालेंगे, उसके बाद डीएपी डालेंगे, उसके बाद उसको पूरा जो घास है उसको चुन के उसके बाद
1: अच्छा,
0: पूरा साफ सुथरा बॉय करेंगे तो साफ सुथरा धान आएगा, तो वो अच्छा बोने के लिए।

0: अच्छा, बीजा तैयार हो जाएगा,
1: बहुत ज्यादा फायदा होगा।
0: हाँ, ज्यादा फायदा होगा और उसमें घटी घास उसा नहीं आने आएगा।
1: आपका कार्यक्रम में आप इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखा, अभी हमने सुन लिए धान की उन्नत खेती, एक बारे में बतावे थलती सविता देवी। तो उम्मीद करिए कि सभी किसान ये जानकारी सुनकर जरूर लाभ उठाती। और देखा कि जानकारी खेतीबाड़ी में हमेशा हम तो समय समय पर सुनाते रहिए, और जरूर किसान भाई बहन के और भी अनुभवी किसान से हमने मिलवाते रहे। और देखा कि अभी जैसा समय है कि किसान भाई बहन सब खेतीबाड़ी भी करो हथी, साथे साथे पशुपालन के भी काम करो हथी। तो एकर में खेतीबाड़ी के साथ साथ अगर डेयरी उद्योग के काम करती तो एकर से आय के दुगना वृद्धि होते। और देखा, दूध के मांग हर घर में रहो है और हर घर के जरूरत है। तो हम डेयरी के काम करके भी जानकारी और प्रशिक्षण लेके बहुत बढ़िया से कर सके ही, और जेकरा से हमने इनके दुगना फायदा होते। और देखा कि कृषि के काम में कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाते, तो डेयरी से वो नुकसान के भरपाई भी हो सके। और एकरा साथ अगर दोनों तरफ बढ़िया से काम चलो तो दोनों तरफ से आय के जरिया भी दुगना बढ़ते। तो देखा कि इस तरीके से किसान भाई बहन हर तरह के काम खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन के काम करके भी लाभ कमाओ होती। और ज़्यादातर अगर बड़ा पैमाना में करना है तो प्रशिक्षण और जानकारी लेकर करती। तो देखा कि इतना समय है किसान भाई बहन कि कार्यक्रम से जाते जाते हम तोनी के एगो बढ़िया गीत सुनइए। तो चला सुनइए एगो बढ़िया सा गीत।

0: खेती बारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोशल मीडिया पर लाखों आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से कटने की आशंका के दावे को पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रहे SIR अभियान का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम कई नई त्रुटि रहित मतदाता सूची में शामिल करना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आज से राज्य के 4 दिवस संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वे 23 जुलाई तक पार्टी की विभिन्न समितियों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। प्रभारी के राजू ने राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया की समय सीमा को कम से कम 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग की है। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज जामताड़ा महाविद्यालय सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं को बाल विवाह, बाल श्रम, नशापान और पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। हजारीबाग के सामाजिक संगठन यूथ विंग ने मॉनसून को देखते हुए शहर के 60 से अधिक ट्रैफिक पुलिस जवानों को रेनकोट उपहार स्वरूप दिए हैं। कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने विपरीत मौसम में भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने वाले इन जवानों के प्रति यह सम्मान व्यक्त किया। और कोडरमा पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल डिक्की खोलकर जेवरात चोरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि ओडिशा के जाजपुर से हुई इन गिरफ्तारियों के साथ ही चोरी के 100% जेवरात, मास्टर चाबी और बाइक बरामद कर ली गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हुए हैं। पेश है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

0: कार्यक्रम अंगना सुन रही आप सभी बहनों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। उम्मीद है बहनों आप सभी अच्छे से होंगी। बहनों आप सभी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। बहनों कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी, जानकारी भी सुनवाएंगे। अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत और उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: 21 जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
0: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
1: आदमी मुसाफिर है।
0: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
2: बहनों, गीत और जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। बहनों, किसी भी चीज की बचत की आदत शुरू से ही रखना चाहिए और सभी चीजों में पानी की बचत सबसे महत्वपूर्ण है। बहनों, आज हम बात करेंगे कैच द रेन के बारे में। कैच द रेन का सीधा अर्थ है जहां गिरे जब गिरे बारिश को वहीं सहेजे। बहनों, हर बूंद की कीमत समझे और उसका संचयन करे। इसके लिए आप अपने घर के छत पर वर्षा जल संचयन पाइप लगाकर उसे जमीन के गड्ढों या टैंकों में जमा कर सकते हैं। यह भूजल के स्तर को बढ़ाता है और जल संकट से निपटने में मदद भी करता है। बहनों, जल संचयन के कई तरीके हैं। रूफटॉप हार्वेस्टिंग के द्वारा छत के पानी को पाइप के जरिए फिल्टर करके सीधे अंडरग्राउंड टैंक या सोखते गड्ढे में डाल दें। इसके साथ ही ट्रेंच और चेकडम के माध्यम से मैदानों या खेतों के किनारे छोटी खाइयां बनाकर

0: बहनों अब सुनवा रहे हैं एक वार्ता, बच्चों एवं माताओं का पोषण आहार। वार्ताकार है देविका वर्मा।
1: नाइटिंगल ने कहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य का रहस्य लोगों के घरों में ही है। स्वास्थ्य एवं विकास, पोषण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी स्थितियों जैसे आवास, जल आपूर्ति, सफाई आदि पर निर्भर करता है। बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे अधिक क्षति कुपोषण से, विशेष करके प्रोटीन, कैलोरी, माली न्यूट्रिशन से होती है। यह बात संपूर्ण विश्व में होने वाले अध्ययनों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। विटामिन ए डी की कमी से बच्चों के शरीर पर अपूर्णीय क्षति होती है। उनमें अंधेपन के लक्षण धीरे धीरे आने लगते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहती है तो एक दिन उन्हें पूर्ण अंधापन आ जाता है। अतः बचपन से ही कुपोषण से बचाव की उचित तथा उचित पोषण प्रदान करने की व्यवस्था जरूरी है। अधिकांश भारतीय परिवारों के आकार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बड़े होते हैं। यदि गर्भावस्था में तथा उसके बाद महिलाओं को समुचित पोषण मिलता है और उनके शिशु की देखरेख का प्रबंध हो सकता है, जैसा कि अक्सर पश्चिमी देशों में होता है, तो वे भी राष्ट्रहित के उत्पादनों में हिस्सा बटा सकती हैं तथा पुरुषों की बराबरी में राष्ट्र के विकास में निजी भूमिका निभा सकती हैं। यदि आहार के नमूने में, बनाने की शैली में, चुनाव के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए तो कम खर्च में पौष्टिक आहार बच्चों व माताओं को मिल सकता है। जैसे सब्जी की जगह प्यूरी बनाकर, जैसे गाजर पत्तेदार सब्जी को स्वादिष्ट तरीकों से बनाकर हेल्दी फूड बन सकता है। संयमी, धैर्यवान तथा कृत संकल्प होने की जरूरत है। महिलाओं को इस संबंध में पोषण संबंधी शिक्षा देना जरूरी है। मातृ शिशु पोषण का तात्पर्य हजार दिनों की अवधि के दौरान माँ और बच्चों के पोषण से है, जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिन तक होता है। जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक बच्चों को माता से गाढ़ा पीले रंग का दूध प्राप्त होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें प्रोटीन एवं विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों को प्रारंभिक कुछ माहों तक संक्रमण से बचाता है और पाचक एंजाइम को भी उत्तेजित करता है। पूरे जीवन में भोजन महत्वपूर्ण है, खासकर शिशु के जन्म के प्रथम वर्ष में। प्रथम वर्ष में ही उसके शरीर एवं स्वास्थ्य की नींव का निर्माण होता है। पोषक आवश्यकताएं प्रति यूनिट शरीर भाग पर इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस अवधि में उसकी वृद्धि तीव्रता से होती है। जन्म पश्चात लगभग 9 माह तक वह तेजी से वसा का संचय करता है, उसके बाद मात्रा कम हो जाती है। उत्तम पोषित शिशु में पेशी ऊतक मजबूत होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद 6 माह की उम्र तक उसे माँ के दूध से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में समावेश रहता है। यह दूध बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए उपयोगी होता है। माता का दूध जो बच्चों के पाचन के योग्य होता है। बहनों, माँ का दूध पूर्णतः जीवाणु रहित होता है और इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होते हैं। बहनों, दुग्धपान कराने से बच्चों और माता दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। कभी कभी पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे वे सोचती हैं कि हमने खट्टा खा लिया तो बेबी को छींके तो नहीं आएगी, हमने तीखा खा लिया तो मेरा बेबी बीमार तो नहीं हो जाएगा। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है, पर किसी कारणवश ये नहीं मिल पाए तो अन्य प्रकार का दूध, यानी गाय का दूध, कुछ डिब्बा बंद दूध दिया जा सकता है। कुछ अवस्था में माता का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए, यदि माता को कोई दीर्घकालीन बीमारी यथा क्षय रोग, हृदय रोग आदि हो। शिशु में प्रोटीन की कमी माता के दूध छूटने पर भी होती है। यदि उस समय गाय का दूध उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो यह कमी पूरी हो जाती है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जो बच्चे के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा हड्डियों एवं दांतों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। माता का दूध एवं गाय का दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो इन खनिजों की पूर्ति होती रहती है। 4 से 6 माह के बच्चों को दाल का पानी, अंडे की जर्दी तथा सब्जियों का सूप दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा विटामिन होते हैं। गेहूं का दलिया, चावल एवं मूंग दाल की खिचड़ी, सूजी की खीर, कॉर्नफ्लेक्स आदि 7 से 8 माह के बच्चे को देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे की पाचन संस्थान भोजन पचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी प्रकार बहनों, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए दूध, अंडे, मछली, दाल, अनाज से बने खाने, चावल, खिचड़ी, दलिया इत्यादि, फल और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। साथ ही घी, तेल आवश्यकता अनुसार दे सकती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आयरन आवश्यक है। कहते हैं एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है तथा वे अपने बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण एवं विकास कर सकती है। गर्भावस्था से ही माता एवं शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दोनों का जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल रहेगा। एक महिला जो मां बनने वाली है, उन्हें इस दौरान पौष्टिक एवं संतुलित आहार मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुपोषण एवं अपर्याप्त पोषण दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मां बनने वाली महिला के आहार में दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दाल, सूखे मेवे आदि देने चाहिए। भ्रूण माता के रक्त से कैल्शियम शोषित कर अपनी आवश्यकता पूरी करता है, परंतु माता के शरीर में इसकी कमी होने से माता की अस्थियां एवं दांत कमजोर हो सकते हैं। इसलिए कैल्शियम युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए तथा कैल्शियम के शोषण के लिए विटामिन डी भी आवश्यक है। जब कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही होती है तो इस दौरान उन्हें तरल पदार्थ का खूब सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है, यथा संभव नूडल्स, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई, ठंडे पेय का सेवन कम करना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन, परिष्कृत मांस और सॉसेस कम चुने, खूब पानी पिए। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से माताओं में एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इनकी कमी से बच्चों में मृत जन्म, कम वजन, कमजोरी और विकास में देरी भी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में अनाज खाएं। चावल, पास्ता, ब्रेड से ऊर्जा और बी समूह के विटामिन प्राप्त होते हैं। साबुत अंकुरित अनाज विटामिन युक्त होते हैं। दिन भर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करके सक्रिय बने रहना, पर्याप्त नींद लेना, पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाकर रखना अच्छा है। यदि पोषण आहार संबंधी जानकारी महिलाओं के पास है तो वे अपने स्वयं को तथा बच्चे को मामूली सी हरी पत्ती वाली सब्जियों से, पालक के थोड़े से जूस से, सस्ते फलों से ही पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और स्वयं को, अपने बच्चों तथा पूरे परिवार को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रख सकती हैं। इसके लिए पोषण संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसमें स्थान विशेष के लोगों की भोजन शैली, भोजन संबंधी आदतें, परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ सेंटर या मातृ शिशु कल्याण केंद्र जैसे संगठन इस संबंध में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होती हैं। यह एक अच्छा अवसर है जहां महिलाओं को पोषण शिक्षा एवं इनके व्यवहारिक प्रदर्शन जैसे तरह तरह के फूड स्टॉल लगाकर जानकारी दी जाती है। अनचाही परंपराएं जो आहार से संबद्ध है तथा प्रत्येक समुदाय में गहरी जड़ जमाए हैं, उनसे मुक्ति महिलाओं को शिक्षित करके मिल सकती है।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी पूर्व प्रसारित वार्ता बच्चों एवं माताओं का पोषण आहार। वार्ताकार थी देविका वर्मा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में यह गीत। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

0: 21 जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
0: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
1: आदमी मुसाफिर है।
0: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
2: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जीवन मृत्यु से यह गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है जान की कसम।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
3: आगे फैमिली, नहीं झुमके ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में एसआईआर अभियान के तहत आज शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भ्रामक खबरों का खंडन कर शत प्रतिशत पंजीकरण का दिया भरोसा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह को दी 17 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। अधिकारियों और संवेदकों को गुणवत्ता से समझौता न करने की दी चेतावनी। देवघर में मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की उच्च स्तरीय समीक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश। चतरा पुलिस और एसएसबी को बड़ी कामयाबी। लावालौंग थाना क्षेत्र से टीएसपीसी का इनामी और वांछित उग्रवादी नरेश गंजू गिरफ्तार। और 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत पहुंची गुमला। दर्शकों को मैच में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत आज शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से नए इन्यूमरेशन फॉर्म भरने और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा इस अभियान की लगातार प्रशासनिक निगरानी की जा रही है ताकि सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोशल मीडिया पर मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दुष्प्रचार का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि इन्यूमरेशन चरण की तार्किक विसंगतियों के आंकड़ों का संकलन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रुटियों की पहचान और निराकरण मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की एक नियमित प्रक्रिया है और सभी पात्र मतदाताओं का नाम इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आज से राज्य के 4 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वे 23 जुलाई तक पार्टी की विभिन्न समितियों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। प्रभारी के राजू ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए लाखों लोगों के नाम छूटने की आशंका जताई है। उन्होंने आम जनता की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया की समय सीमा को कम से कम 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग की है।
1: हम सभी एमएलएस भाई सीओ के पास जाके वो एसआईआर को और 10 दिन एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड होगा क्योंकि केवल और 9 दिन है मगर लाखों वोटर्स का मैपिंग नहीं हुआ, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ।
0: नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह शहर के विकास के लिए 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का आज शिलान्यास किया है। मौके पर मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इन 119 योजनाओं के धरातल पर उतरने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जामताड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण के घर हुई पुलिस छापेमारी को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले को उठाने के कारण भाजपा नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।
2: पुलिस जो है वो जनरल डायर की पुलिस की तरह काम कर रही है। डीएसपी के साथ 4 थानों के पुलिस ने धावा बोला और जिलाध्यक्ष के घर को इस तरीके से घेर लिया गया जैसे कि किसी आतंकवादी के यहाँ रेड हो रहा। पूरे घर के सदस्यों को बहुत ही खराब तरीके से बिहेव किया गया।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने और सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित मेला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव लोचन बख्शी के खिलाफ वित्तीय गबन के आरोपों की उच्च स्तरीय एसआईटी जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची वन प्रमंडल में रहते हुए इस अधिकारी द्वारा करोड़ों रुपए का सुनियोजित गबन और राजकोष से लूट की गई है। राजधानी रांची में आज नाबार्ड का 45वां स्थापना दिवस भौगोलिक संकेतक GI स्थानीय विरासत को वैश्विक पहचान थीम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि और झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक गरिमा जैन ने राज्य के GI उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में राज्य के 12 अनूठे GI उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्थानीय शिल्पकारों और उत्पादक समूहों को मंच पर सम्मानित किया गया। चतरा पुलिस ने TSPC संगठन के वांछित उग्रवादी नरेश गंजू उर्फ रविकांत को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सिमरिया SDPO ने बताया कि इस उग्रवादी पर हत्या, रंगदारी और पुलिस पर हमले सहित 6 मामले दर्ज थे।
1: ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि रेफर पे मंगनिया लावालौंग में है, तो इसके आने की सूचना दी। इसी क्रम में छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल ने वहां पर रेड किया, तो वहां पे जिसको जो मंगनिया में फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड के 5 गिरफ्तार किया गया।
0: हजारीबाग के सामाजिक संगठन यूथ विंग ने मॉनसून को देखते हुए शहर के 60 से अधिक ट्रैफिक पुलिस जवानों को रेनकोट उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने विपरीत मौसम में भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने वाले इन जवानों के प्रति यह सम्मान व्यक्त किया। हजारीबाग के SP अमन कुमार ने यूथ विंग के इस सराहनीय कार्य का स्वागत किया और इसे एक सजग समाज का प्रतीक बताया।
2: हजारीबाग यूथ विंग के द्वारा CCR के प्रांगण में आज ट्रैफिक के जवानों को रेनकोट का वितरण किया गया है। बरसात को देखते हुए यह कार्य किया गया है ताकि ट्रैफिक के जवानों को काम करने में थोड़ी सहूलियत। ट्रैफिक का काम काफी टफ है और जवान जो है लगातार दिन भर खड़े रहते हैं और बरसात, धूप और गर्मी, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, लगातार अपना ड्यूटी करते हैं।
0: रांची पहली बार एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके सभी 7 मुकाबलों के लिए दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाएंगे। मोराबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेल निदेशक छवि रंजन और सेना के प्रतिनिधि मनोज कुमार झा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस भव्य आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। इधर 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत गुमला पहुंची, जहां जिला प्रशासन और खेल प्रेमियों ने सेना के जवानों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। मौके पर परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम में एक प्रदर्शनी मैच भी खेला गया। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन 25 जुलाई से राजधानी रांची में होने जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में SIR अभियान के तहत आज शहरी क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भ्रामक खबरों का खंडन कर शत प्रतिशत पंजीकरण का दिया भरोसा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह को दी 17 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। अधिकारियों और संवेदकों को गुणवत्ता से समझौता न करने की दी चेतावनी। देवघर में मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की उच्च स्तरीय समीक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश। चतरा पुलिस और SSB को बड़ी कामयाबी। लावालौंग थाना क्षेत्र से TSPC का इनामी और वांछित उग्रवादी नरेश गंजू गिरफ्तार। और 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत पहुंची गुमला। दर्शकों को मैच में मिलेगा

निःशुल्क प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर और गम्हरिया थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष पहल शुरू की है। क्षेत्र में गश्त व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए टाइगर मोबाइल की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लगातार निगरानी और त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने तथा आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि
2: टाइगर मोबाइल का संख्या थाना आदित्यपुर में बढ़ा दिया गया है। उसमें जो स्टाफ वगैरह या फिर जो कॉन्स्टेबल्स वगैरह की कमी थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। अभी फिलहाल हम लोग बस वो प्रिवेंटिव एक्शन पे जा रहे हैं ताकि कोई क्राइम ना हो। धीरे धीरे हम लोग जो क्रिमिनल्स जेल से निकल गया है या फिर जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे और जो केस में वांटेड है उन पर भी हम लोग कार्रवाई।
1: रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में स्वास्थ्य जाँच एवं नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के कुल 113 कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव दया शंकर मिश्रा ने कहा कि
3: सब आई चेकअप का कैंप हम लोग करवाए थे जिसमें सारे सरकारी ऑफिसर या सरकारी अधिकारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमंडल के SDPO कार्यालय के नगर पंचायत के और भी जो आसपास के सरकारी कार्यालय है उनके लोगों को बुलाया गया और जांच कराया गया। कुल 61 लोग यहाँ पर अभी तक जितना चेक हुआ है चेकअप हुआ और 54 लोगों का आई चेकअप हुआ है।
1: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरायकेला खरसावां जिले का प्रदर्शन राज्य स्तर पर बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आने वाले दिनों में और अधिक प्रभावी प्रयास कर बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि
4: 9 तरह का आपको विधि है जनसंख्या को नियंत्रित करने की, जिसमें से 4 विधि में हम लोग राज्य में अव्वल है, जबकि कोई भी जिला 1 में रहा हम 4 में रहे। पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष थोड़ा और अच्छा करें, 4 नहीं बल्कि 9 में हम समझ रहे की राज्य में अव्वल।
1: करीब 50 वर्षों से आयोजित होने वाला ऐतिहासिक रथ मेला तथा लगभग 350 वर्ष पुरानी रथ यात्रा स्थानीय लोगों की आस्था श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मेले का उद्घाटन शनिवार को नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परंपरा क्षेत्र की पहचान है और इसके संरक्षण एवं भव्य आयोजन के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि
5: ये जो ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला है ये लगभग 50 साल से मेला चल रहा है और यहाँ की संस्कृति करीब 350 वर्ष पुरानी है और हम लोग मेला में सभी तरह के बूढ़े से लेकर महिला बुजुर्ग बच्चे सभी का हम लोग ने ध्यान रखा है।
1: कला और सांस्कृतिक विरासत को अपनी गोद में समेटे सरायकेला में रथ महोत्सव ने एक विशिष्ट पहचान बना ली है। लगभग 350 वर्ष पुरानी यह ऐतिहासिक परंपरा आज भी पूरी भव्यता के साथ कायम है। समय का चक्र निरंतर आगे बढ़ता रहा लेकिन इस गौरवशाली महोत्सव की गारिमा आस्था और परंपरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
6: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी योजना। संकलन एवं वाचन है प्रकाश कुमार राणा का, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: दोस्तों, आज के समय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि किसी काम का हुनर भी बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी रुचि और रोजगार की जरूरतों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कई युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलती है। जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे भी सीखें एवं कौशल विकास के आधार पर स्वरोजगार अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है। सिलाई, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के कई तरह के कौशल विकास पे आधारित ट्रेड्स चलाए जाते हैं, जहां प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य कौशल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी कौशल विकास केंद्र में जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम आज आप पहुँचे हैं कौशल विकास केंद्र में, तो आइए यहां से जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, सरकार की क्या पहल होती है, इसकी पूरी जानकारी सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम दीपेंद्र कुमार है। आप जहां आए हैं ये आईसीएड दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र है। हमारा सेंटर मुख्यमंत्री साथी योजना के अंतर्गत चल रहा है। ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी है जो इस पूरे कार्यक्रम को देखती है। हमारे केंद्र में बच्चों के लिए अलग अलग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
0: अभी फिलहाल जो है युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत ही सरकार पहल कर रही है, तो कौन कौन सा ट्रेड्स जो है चलाए जा रहे हैं आपके सेंटर में?
1: हमारे यहाँ पे एक तो डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट का कोर्स है, जिसके अंतर्गत में बच्चों को आईटी के कोर्सेस हैं जो करवाए जाते हैं। ये 3 महीने का कोर्स होता है। फिर फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटर पेरिफेरल्स का कोर्स है, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर, टेबल सूट करना, ये सब सिखाया जाता है। साथ में हमारे यहाँ स्विंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स है, जिसमें बच्चियां हैं, लड़कियों के लिए है ये, जो सिलाई का कोर्स करती हैं, सिलाई मशीन को चलाना सीखती हैं। साथ ही में हमारे पास में HHA का कोर्स है, जिसके अंतर्गत में बच्चे हेल्थ केयर सेक्टर के ट्रेनिंग लेते हैं और साथ में होम केयर और दूसरे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ केयर के, वहां पे जाके जॉब प्राप्त करते हैं। साथ में हमारे पास में जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट का भी है, जिसमें हम लोग बच्चियों को ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दिलाते हैं। ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स है जो इस बार हमारे पास में ऐड हुआ है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का सारा ट्रेनिंग है जो उनको दिया जाएगा। साथ में अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स भी है, जिसके तहत में अकाउंटेंसी वर्क के बारे में बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है। और जितने भी कोर्स हैं इसको कंप्लीट करने के बाद में बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट सहायता भी मिलता है, उनको रोजगार सहायता भी प्रदान किया जाता है। क्योंकि अभी झारखंड में उतनी इंडस्ट्री अभी अवेलेबल है नहीं, ठीक है, और तो हमारी कोशिश तो ये रहती है झारखंड के अंदर में जितने भी उद्योग हैं, जो प्रतिष्ठित उद्योग हैं, वहाँ पे बच्चों को रोजगार दिया जाए, ठीक है। उनके हम लोग उनसे उन सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे संपर्क कर प्लेसमेंट टाइप कोशिश करते हैं करवाने का अपने यहाँ पे, और बच्चों को रोजगार देने का कोशिश करते हैं।
0: लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, कई युवा जो है हमारे कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, उनके मन में भी लालसा होती कि कोई रोजगार हमारे पास होती, क्योंकि रोजगार तभी मिलता है जब हाथों में हुनर होता है। युवा को आपसे जुड़ने के लिए क्या क्या आहार्ता होनी चाहिए, पात्रता क्या क्या होनी चाहिए?
1: देखिए, क्या है ना, ये कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग, रहना खाना, ठीक है, उनकी किताबें, उनकी ड्रेस, सब कुछ मुफ्त में दी जाती है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जब हमारे पास जुड़े तो यहाँ से सीख कर जिस क्षेत्र की ट्रेनिंग ले रहे हैं उस क्षेत्र के सेक्टर में जॉब प्राप्त करें, और हमारी भरसक कोशिश होती है कि उनकी जो सैलरी है, जो शुरुआती जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो कम से कम उतना मिले जिससे वो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है करियर में किसी भी कैंडिडेट के लिए जरूरी होता है, वो उनको मिल जाए और वो अपना कार्य शुरू कर सकें, ठीक है, और अपने परिवार की मदद कर सकें। जहां तक रही योग्यता की, 18 से लेकर 35 साल तक

0: के बच्चे जिनके पास में आपका खुद का आधार कार्ड हो, ठीक है, उन जाति आवासीय चाहिए होता है हमें, और साथ में उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ केंद्र में आके अपना वो नामांकन करवा सकते हैं।
1: अपने केंद्र का पूरा पता
0: ये हजारीबाग में आपके मार्कम कॉलेज रोड में स्थित है हमारा आईसी दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के नाम से। बच्चे यहाँ आकर जो भी जरूरी जानकारी है और अपना नामांकन करवा सकते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल, और कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर रिपेयरिंग, सिलाई, नर्स की भी ट्रेनिंग होती है, और ब्यूटिशियन, ग्राफिक डिजाइनर, अकाउंट असिस्टेंट वगैरह आपके पास योजना है, सबका लाभ भी लेते हैं। झारखंड के कोई भी राज्य
0: झारखंड निवासी कोई भी यहाँ पे आके नामांकन करवा सकता है। जरूरी शर्त ये है कि वो झारखंड का होना चाहिए, और किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे हजारीबाग के हो, चतरा के हो, कोडरमा के, कोई भी आके यहाँ पे अपना नामांकन करवा सकता है। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ पे बच्चे रुकते हैं, उनको जो जरूरी नेसेसिटी जो होती है रहने की, सारी चीजें यहाँ पे निःशुल्क प्रदान की जाती है। खाना है, नाश्ता है, सब कुछ है यहाँ पे उनको उपलब्ध कराया जाता है।
1: और ये हम देख रहे हैं कि आपके पास सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ से निगरानी भी होती रहती है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, क्लास में है कि नहीं है, या तो फिर उपयोगिता उनकी क्या बन रही है।
0: हमारे लिए सबसे जरूरी है कि जो भी बच्चे यहाँ हैं वो सुरक्षित रहें, हर पेरेंट्स का कंसर्न होता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को जरूरी जो सुरक्षा है, लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, तो सेफ्टी तो हमारा सबसे फर्स्ट कंसर्न है जो रहता है, उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहती है। तो ये हमारे यहाँ क्लास का जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि जब भी बच्चे यहाँ नामांकन लेते हैं उनकी काउंसलिंग होती है। जब क्लासेस चालू होते हैं तो उनका इंडक्शन कराया जाता है प्रॉपर, जिसके बारे में जहाँ पे उनको प्रॉपर सब कुछ बताया जाता है। साथ में जो कोर्स सीखने आए हैं, कोर्स का जो कंटेंट है वो उनको बताया जाता है। साथ में हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जाए, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिज्यूम प्रिपरेशन या इंटरव्यू देना कैसे है। साथ साथ में हम लोग, जैसे अगर आप 3 महीना यहाँ पे हैं तो आपको अलग अलग समय में, समय के अंतराल पर आपको रोजगार मेले में भी सम्मिलित कराया जाता है, जहाँ पे आपको ये सीखने और समझने का मौका मिलता है किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कैसे बात करना है, इंटरव्यू देना है या रिज्यूमे तैयार करना है, कैसा होना चाहिए। इस योजना के तहत में 2 चीजें हैं। एक तो है कि हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों को रोजगार देना ही देना है। अगर किसी कारणवश कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी है जो जॉब पे नहीं जा सकते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए इस योजना के अंतर्गत में लड़कों के लिए 1000 रुपया पर महीने रोजगार भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता के रूप में उसे हर महीने मिलता है, जो साल भर मिलता है। लड़कियों को 1500 रुपये हर महीने मिलता है, जो सरकार की तरफ से उनको दे होता है, ठीक है, हर महीने मिलता है। शर्त ये होती है कि 90 दिन के अंदर, यानी सर्टिफिकेशन के 90 दिन के अंदर उनका रोजगार नहीं मिला है, तो वैसे केस में बच्चों को इस तरह से सरकार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करती है। जहाँ रहे बच्चे बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, एक हमारी टीम होती है, प्लेसमेंट टीम होती है, जो उनके लगातार संपर्क में रहती है कि बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, और समय समय पे हम जो बच्चे सक्सेसफुल प्लेसमेंट पा चुके हैं तो उनको हम लोग अपने केंद्र में बुलाते भी हैं। यहाँ आप जो बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उनसे संपर्क करवाते हैं। स्टार एलुमनाई फंक्शन के नाम पे हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें बच्चों को ये जानने का मौका मिलता है कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है किसी का भी, और इससे हमें भी सहायता मिलती है। तथा एक और चीज है जो सरकार की तरफ से दी जाती है, वो माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर बनाए गए हैं भारत के अलग अलग जगहों पे, 8 अलग अलग जगहों पे भी बने हैं और भी बन रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चों को किसी भी तरह का तकलीफ होती है या ये सेंटर के अंदर क्या होता है, मदद करने के लिए तैयार रहती है।
1: कौशल विकास के अंतर्गत जो भी सुविधाएं दी जाती हैं हमारे युवाओं के लिए, युवा भी सुनकर प्रेरित होंगे। यदि उनके पास पढ़ने के बाद खाली समय है, बेरोजगार हैं, तो अपने हाथों को हुनर देने के लिए अपने नजदीकी जो कौशल विकास जो योजना है जाके वहाँ पर मिले।
0: मेरा तो सिर्फ यही कहना होगा कि जितने भी युवक ऐसे हैं जो किसी कारण बस पिछड़ रहे हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास में या जरूरी संसाधन नहीं है, वो कौशल विकास से जुड़े और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना करियर का शुरुआत करें और आगे अपने लाइफ को ऊंची ऊंचाई पर ले जाए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, किसी भी योजना का वास्तविक सफलता का पता तब चलता है जब उसके लाभार्थी स्वयं अपने अनुभव साझा करते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण ने अनेक युवाओं और बच्चियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उनके न केवल नए हुनर सीखे हैं बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल किया है और अपने भविष्य को नई दिशा दी है। आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि किस तरह से कौशल विकास केंद्र में आकर उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो सीख पा रहे हैं, अपने हाथों को हुनरमंद कर पा रहे हैं, इनके अनुभव को जानते हैं।
2: मेरा नाम मेरा नाम सुहाना प्रवीण है और मैं चरी गांव की रहने वाली हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। हमें निःशुल्क सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जैसे ड्रेसेस,

0: खाना, किताबें, कॉपियाँ।
1: यहाँ पर क्या सीख रही हैं आप?
0: यहाँ हम JBT का क्लास करते हैं जिसका फुल फॉर्म है जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट।
1: तो यहाँ से सीखने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है?
0: यहाँ पे सीखने के बाद मेरा मन में ख्याल आता है कि हम भी एक डिपेंडेंट लड़की बने, कुछ सीखे और जॉब करे। मतलब हुनर सीखने के बाद हम बाकियों से अलग बन पाते हैं, हमारा अलग पहचान बनता है, सब लड़कियों से अलग हुनर रहता है हमारे पास यहाँ सीखने के बाद। थैंक यू।
1: और एक और छात्रा है, इनसे जानते हैं इनकी राय कि क्या राय है आपकी कौशल विकास योजना के बारे में।
2: जी, मेरा नाम सारिया परवीन है, मैं खिरगांव से आई हूँ और यहाँ पे आने का मेरा रीजन था कि इंडिपेंडेंट हो जाऊं, थोड़ा हुनर जान जाऊं, अपने हाथ में हुनर आ जाएगा। तो
1: कैसा अनुभव लग रहा है आपको यहाँ पर सीखने में?
2: सीखने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, सिलाई में है तो अच्छा लगता है सीखने में।
1: सिलाई में अभी क्या सीख रही हैं?
2: सिलाई में बहुत कुछ सिखाया गया है, ब्लाउज, सूट, सलवार, ये और भी बहुत कुछ। बस अपने आप हाथ में हुनर हो जाएगा तो घर में ही सीएंगे, घर में ही पूरा करेंगे, अपना बिजनेस सोच रहे हैं।
1: क्या नाम है आपका?
0: काजल कुमारी।
1: कहाँ से आए?
0: हजारीबाग से। जिसका सुविधा अच्छा, कोई भी बाधा नहीं हुआ यहाँ पे आने पे, क्योंकि यहाँ के मोबिलाइजर लोग से हमको यहाँ का पता चला था। यहाँ के बारे में बताया, यहाँ की सुविधा के बारे में बताया, यहाँ के जो जो कोर्स होता है उसके बारे में बताया, समझाए कि तुमको यहाँ से प्लेसमेंट दिया जाएगा। यही हर कोई माँ बाप का यही होता है कि कैसे वहाँ रहेगी, कभी गए नहीं है तो। हाँ, पूरा सुविधाजनक है यहाँ, सब चीज अच्छा है, खाना पीना सब चीज अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा है।
1: सीखने के बाद क्या करेंगे आप?
0: हम प्लेसमेंट में यहाँ से मिलेगा तो प्लेसमेंट में जाएंगे, नर्स का कोर्सिंग कर।
3: मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं बरका कला इचाक की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर JBT जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट की यहाँ पर मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और यहाँ की हर एक चीज है बहुत अच्छी है, यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छे से हमको प्रोवाइड किया जाता है, क्लासेस भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर रहने के लिए, घर हॉस्टल भी दिया गया है, खाने के लिए खाना, ड्रेसेस, सब सारी चीजों की सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी है।
1: और शिक्षा की क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली यहाँ पे?
3: यहाँ शिक्षा की हर एक तरफ से सारी सुविधाएं सही है, बहुत अच्छी है, मेरे को यहाँ बहुत पसंद है।
1: यहाँ सीखने के बाद क्या करेंगे आप?
3: सीखने के बाद एक डिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ, जिसमें खुद का करना चाहते हैं। हर एक लड़की चाहती है कि हम एक डिपेंडेंट गर्ल बने, अपना समाज में एक अलग पहचान होना चाहिए, तो सब कुछ यही चाहते हैं।
1: अब आइए जानते हैं यहाँ के प्रशिक्षिका महोदया से कि किस तरह से सिखाती हैं बच्चों को और क्या आपका अनुभव रहता है। बहुत सारी बच्ची जो आती हैं बाहर से, गाँव से भी आती हैं, कुछ तो बोलने में हेजिटेशन उनको रहता है, कुछ बोल नहीं पाती हैं, तो उनको बोलने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं आप?
4: मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं हजारीबाग की ही रहने वाली हूँ। दरअसल हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं, अधिकतर जो है स्टूडेंट यहाँ के बाहर गांव के ही हैं। गांव के हैं तो थोड़ा बोलने में हाँ हिचकिचाहट होती है, तो मेरा एम है कि जैसे मैं कुछ भी अपना प्रैक्टिकल या थ्योरी करवाती हूँ, जैसे मैं अगर थ्योरी करवाई, जो भी टॉपिक मैंने दिया टॉपिक मैं फिर एक एक कर से वापस रिहर्सल करवाती हूँ कि आप लोग अब पढ़ाइए, ठीक है। वैसे क्या होगा, ये लोग का एक दूसरे को जानेंगी, जानने के बाद इन लोग का बोलने का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, किसी को देखकर अचानक अगर कोई चेकिंग के लिए वगैरह आए तो किसी को देख के हिचकिचाए ना, डरे ना बोलने में, तो वो मिलता है।
1: इनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या आपका पहल होती है आपकी?
4: फर्स्टली एक लड़की है तो लड़की के नाते जैसे होता है, क्या है गांव में होता है कि आप 10th कर लिए, 12th कर लिए, शादी कर लेना, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं ये बताती हूँ कि अगर आप हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, आप फर्स्टली आप एक लड़की है तो एक इंडिपेंडेंट लड़की बनिए, आपको यहाँ से हम सुविधा जॉब का भी बेनिफिट देंगे ताकि अपना खुद का ऑन आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, या आप बाहर सैलून में भी वर्क करना है कर सकते हैं। और मैं जैसे कि मैं ब्यूटिशियन ट्रेनर हूँ तो एक ब्यूटी लाइन आप होम सर्विस भी दे सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि आपको अगर घर से बाहर जाने नहीं मिल रहा, आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली बन के वर्क कर सकती हैं।
1: और कौशल विकास क्यों जरूरी है आज के समय में?
4: आज के जमाने में कौशल विकास सरकार इसलिए चला रही है ना कि जो बच्चे किसी कारणवश अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कि वो पैसे खर्च करके किसी कोर्स में एडमिशन करवाए, ठीक है, वो कौशल विकास में एडमिशन ले, यहाँ पे रहने खाने की सुविधा, आपके कोर्स की सुविधा बिल्कुल फ्री है, यूनिफॉर्म वगैरह, किताब वगैरह सब चीज फ्री है, आपको 3 टाइम नहीं बल्कि हमका स्नैक्स भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्रेंड जोन की तरह ट्रेनर्स भी फ्रेंड जोन की तरह रहेंगे, यहाँ के स्टाफ भी जो है वगैरह सब भी फ्रेंड जोन की तरह रहेंगे। अगर कोर्सेज जैसे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज करवाई जा रही है, एक ब्यूटिशियन का है, सिलाई का है, नर्सिंग का है, कंप्यूटर में FTCP का है, ITHA का है, ग्राफिक डिजाइनर का है और एक अकाउंट असिस्टेंट का है, ठीक है, जो कि आप पैसे देके सीखोगे, हम लोग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल जानकारी देंगे। और जॉब भी ढूंढने में आजकल के जनरेशन में इतनी असुविधा हो रही है, हम लोग यहाँ आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। वेलकम सर, थैंक यू।
5: इन अनुभवों से स्पष्ट है कि कौशल विकास केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक मजबूत कदम है। यदि आप भी कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो अपने नजदीकी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी योजना। संकलन एवं वाचन था प्रकाश कुमार राणा का, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हुए हैं। पेश है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है जुर्म।

0: 21 जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
0: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
1: आदमी मुसाफिर है।
0: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
2: अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है गर्ज़।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म औजार से यह गीत। अभिजीत, अनु मल्लिक, जोजो और अनामिका की आवाजों में।
1: We are about to hear a song that has been heard before. This is different, you know, because it is funk, funk, funk, defunk, defunk.

इसी गीत के साथ कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया एआई वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत आईटीआई पीएमएसईटीयू योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक जेडीडी ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा, कोंकल संगमा, डॉ सतीश पुनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हाजिर हैं आप सभी के पसंद के गीतों को लेकर। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटा से यह गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने माली टोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। इसी गीत को सुनना चाहा है रसूलीगंज से मोहम्मद गुलाम अली, मोहम्मद सद्दाम अली, पप्पू, छोटू और इनके घर के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है खिरगांव माली टोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार, अनिकेत मालाकार और इनके घर के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छोटे बाबू से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा है चेपा कला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास ठाकुर, प्रभात ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका, दीपिका, शंभुनाथ जी, सीसीएल बड़का काना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा और इनके घर के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म छोटे बाबू से यह गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये गीत फिल्म आशिकी से, और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी दोस्तों ने झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, जगदीश प्रसाद साहू, विजय कुमार साहू और इनके घर के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद किया था मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा तथा ढेर सारे साथीगण। इसी गीत को सुनना चाहा था पंचमुखी हनुमान मंदिर न्यू एरिया हजारीबाग से अतनु घोष, शांतनु घोष, मीरा घोष, श्री रूपा घोष, मिस्टू घोष, प्रणीत रॉय और टुबोय रूही। अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने बड़का काना से तस्नीम कौशर, शाहीन सुल्ताना, इफ्जाल ताज, एम ए मलिक। इसी गीत को सुनना चाहा है सिंघानी कुर्रा हजारीबाग से लक्ष्मी रानी, सृष्टि रानी, रूबी देवी, श्री प्रसाद, आशा देवी, सुमन कुमारी और इनके घर के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है ओरिया से दीपक कुमार, पवन कुमार, मोनू कुमार, सोनू कुमार, शिखा कुमारी और इनके घर के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आज का अर्जुन से ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में।

0: 21 जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
0: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
1: आदमी मुसाफिर है।
0: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
2: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है दो रास्ते और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने पोचरा ग्राम से महेश राम, वर्षा, सरिता देवी, पिंटू, फुलवासी देवी और समस्त परिवार। हजारीबाग पतरातो से वेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन एवं समस्त परिवार।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी चाहत से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसे स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
4: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद

0: क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के

0: बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक एक या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले दो दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार।
1: बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
0: रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह।

नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है।

मेन स्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया।

1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत, इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया।

बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में नसीर अपनी कामयाबी की कहानी आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी अदाकारी के चर्चे सात समंदर पार तक पहुंच गए। सन 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। लेकिन नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्मों से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया, तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती।

0: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी, और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह।
1: ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचा-ए-अतफाल है दुनिया मेरे आगे।

0: तमाशा मेरे आगे।
1: दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया।

फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्धसत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आइए सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है इजाजत।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्मफेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्मफेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया।

0: दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं।

0: संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेस आचा वास्केस की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन 2 सप्ताह के भीतर किया जाए और गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अदालत ने समिति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तरीके और व्यवस्था की सिफारिशें करने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both Houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
3: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
2: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of the protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for the Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maia Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Marisi's Fund in Chisinau. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In Jammu and Kashmir, four more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division today, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least 7 people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Pooch district. Chief Minister Umar Abdullah has announced an ex-gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Poonch districts. Meanwhile, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation following heavy rains, flash floods and landslides in several districts of the Union Territory. The IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 2 days. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of Northeast India during the next 2 to 3 days. Supreme Court today directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired Chief Justices and Judges of the High Courts across the country. A bench led by Chief Justice of India, Surya Kant, directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submitted its recommendations to both the Union Government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. And that is the end of this news bulletin.

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:11 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

अभी आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत फिल्म खिलाड़ी से। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और अनुराधा पोडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम एक फिल्म से।

कार्यक्रम एक फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुपरहिट फिल्म 1992 की बनी फिल्म दीवाना। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज कंवर और निर्माता हैं गुड्डू धनोवा और ललित कपूर। इस फिल्म के गीतों को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत

अभी आपने सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना के कुछ गीत। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान, और सहायक भूमिका में हैं अमरीश पुरी, सुषमा सेठ और आलोक नाथ। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी भी काफी बहुत अच्छी थी, लोगों ने काफी सराहा और गीत तो काफी कर्णप्रिय रहे। अभी भी लोग इस फिल्म के गीतों को बहुत पसंद करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना के कुछ गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौड़ की आवाज में।

दोस्तों, फिल्म दीवाना को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नदीम श्रवण को मिला और सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए समीर को मिला ये गीत के लिए, और साथ ही सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए कुमार सानू को भी मिला। तो इस तरह से कि सभी में संगीत को, गीतकार को, सभी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और शाहरुख खान की ये पहली फिल्म थी जो कि सुपरहिट रही। तो अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का अंतिम गीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में

0: प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
2: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m, 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
1: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said,